हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज शनिवार है। सक संवत 1948 के ज्येष्ठ आदि मास के कृष्ण पक्ष की तिथि षष्ठी, तदनुसार दिनांक 6 जून ईस्वी सन 2026। स्टूडियो घड़ी में 5:58 हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का दैनिक प्रसारण। सुप्रभात।

आकाशवाणी का जी हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोता स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र पर। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो

0: पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: आम मनुष्य व महापुरुष में एक अंतर होता है कि महापुरुष अपने जीवन में घटित घटनाओं व छोटी छोटी बातों से सबक लेकर अपना जीवन सुधारते रहते हैं। एक बार जो भूल हो जाए उसे वे दोबारा करने की गलती नहीं करते। इस प्रकार निरंतर आत्म सुधार की प्रक्रिया द्वारा वे आम पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन ऐसे ही घटनाओं से भरा हुआ है। बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करते समय एक बार गांधी जी को ऐसा आभास हुआ कि वे जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपने प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना शुरू कर दिया तथा छोटे से छोटे खर्च भी, बस का किराया, अखबार का खर्च, डाक खर्च, चाय पान का खर्च इत्यादि नोट करने लगे तथा रात्रि को सोने से पहले इसे वे एक खाते में दर्ज करते। इस प्रकार वे अपने गैर जरूरी खर्च पर नियंत्रण पाने में सफल हो गए। उनकी ये आदत आजीवन बनी रही तथा इसी के फलस्वरूप बड़े बड़े आंदोलनों के संचालन के समय भी वे जहां लाखों रुपए खर्च का हिसाब किताब रखना पड़ता था, आय व्यय का समुचित संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहते थे। मितव्ययिता एक महान गुण है और जीवन को सुखमय बनाने के लिए अति आवश्यक। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर की प्राचीन उक्ति इस बात पर पूरी तरह लागू होती है। गांधी जी ने तो अपने विद्यार्थी जीवन में ही इस गुण की महानता को पहचान कर इसे अपना लिया था। लंदन में शिक्षा प्राप्त करते समय अपने खर्च का हिसाब किताब देखकर उन्होंने इसे आधा करने की ठानी तथा अपनी योजना को बड़े सुंदर ढंग से क्रियान्वित किया। वे एक परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में रहते थे तथा प्रति सप्ताह पैसे देते थे। उन्होंने देखा कि शिष्टाचार के नाते उस परिवार के सदस्यों को उन्हें कभी

0: कभी होटल में खिलाने ले जाना पड़ता था तथा उनके साथ कई पार्टियों पर भी जाना पड़ता था। इन पर काफी खर्च होता था तथा साप्ताहिक बिल में कटौती संभव नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस झूठे मान सम्मान को तिलांजलि देकर अपना खर्च कम करना ही उचित है। उन्होंने उस परिवार के साथ रहना छोड़कर एक छोटे कमरे की तलाश की। इस प्रकार न केवल उनके साप्ताहिक बिल में कमी आई वरन साथ ही टैक्सी पर होने वाला खर्च भी बचने लगा। इस तरह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा वे खर्च को पहले से आधा करने में सफल हो गए। कहते हैं, जब मनुष्य एक सद्गुण सच्चे मन से अपनाने का प्रयास करता है तो कई अन्य सद्गुण स्वतः उस सद्गुण के साथ चले आते हैं। गांधी जी को इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। जब मितव्ययिता की चेष्टा में उन्होंने पाया कि उन्हें सैर की अच्छी आदत भी पड़ रही है, उन्होंने जब अकेले कमरा लेकर रहना शुरू किया तो सोचा इस प्रकार प्रतिदिन 8-10 मील पैदल चलने की आदत भी उन्हें सहज ही पड़ गई तथा इसी आदत का यह परिणाम था कि इंग्लैंड प्रवास के दौरान न केवल उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ वरन साथ ही एक सुडौल व मजबूत शरीर भी स्वतः तैयार हो गया। समय के सदुपयोग की शिक्षा गांधी जी ने लंदन प्रवास के दौरान अपने ही जीवन से सीखी। संस्कृत में समय की सदुपयोगिता पर एक सुंदर श्लोक है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात बाल्यकाल में विद्या नहीं अर्जन किया, यौवन में धन न कमाया, प्रौढ़ावस्था में ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वृद्धावस्था में क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। पर गांधी जी ने समय पर ही समय के सदुपयोग का सबक सीख लिया था। जब वे अकेले रहने लगे तो उन्होंने पाया कि उनके पास काफी समय बेकार बच जाता है। उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया लैटिन व फ्रेंच भाषाएं सीखकर। इस प्रकार बैरिस्ट्री की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मात्र समय के सदुपयोग द्वारा 2 अतिरिक्त भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का चिंतन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का हमारे कार्यक्रम वंदना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान के आज के अंक का संगीत में पाठ।
1: एपिसोड नंबर 400 400।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान के आज के अंक का संगीत में पाठ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब हम आपको बता दें आज के हमारे शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग 7 बजे, सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग आप सुनेंगे 7:20 पर, गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर, गीत संगीत समाचार प्रभात 8 बजे 8:15 पर, मॉर्निंग

प्रादेशिक समाचार 8:30 पर, मॉर्निंग मेलोडी 8:45 पर, 9 बजे से लेकर 9:10 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, और 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ भाग 4। विविध भारती के कार्यक्रम में शामिल होंगे आप 9:20 से 10 बजे तक। 10 बजे हम आपको सुनाएंगे हमारा विशेष कार्यक्रम मशहूर गीतकार स्क्रीन प्ले।

पांच बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा 5:02 पर, खेती बाड़ी 5:32 पर, कार्यक्रम मेहनत 6

0: जिले में आजकल 7:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार 7:15 पर, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स 7:30 पर, कार्यक्रम नवचेतना आप सुनेंगे 7:45 पर, 8:00 आपकी चाहत, 8:10 पर विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष, समाचार संध्या 8:45 पर, 9:00 News@9 स्पॉटलाइट 9:15 पर, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे 9:30 से लेकर 10:00 तक, 10:00 आप सुनेंगे मशहूर गीतकार स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर राजचंद्र कृष्ण साहब के जन्मदिन पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूखुरी रास्ता, हिंदी समाचार 11:00, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, हमारी सभा का समापन होगा 11:10 पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। CBSE परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपराम सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंताराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
0: आकाशवाणी का जी हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर।

0: केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शब्बीर हुसैन की वार्ता शिक्षा सबों के लिए।
1: शिक्षा समाज के प्रगति और विकास का मूल अंग है। समाज, राज्य अथवा देश तभी प्रगति और विकसित हो सकता है जबकि उसके लोग शिक्षित हों। शिक्षित होने से ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। नेशनल लेवल पर जैन समाज में साक्षरता दर 94% है, क्रिश्चियन समाज में 74.3%, बुद्धिस्ट समाज में 71.8%, सिख में 67.5%, हिंदू में 63.6% तथा मुस्लिम में साक्षरता दर 57.3% है। मुस्लिम में केवल 2.76% स्नातक या उससे ऊपर स्तर तक शिक्षित हैं तथा केवल 8.5% सरकारी नौकरियों में हैं। 48.1% मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित हैं। करीब 31% मुस्लिम गरीब रेखा के नीचे हैं। अशिक्षा के कारण कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं जिससे फर्टिलिटी रेट अधिक तथा चाइल्ड मोर्टालिटी रेट अधिक होने के कारण स्वास्थ्य खराब होता जाता है। मुस्लिम समाज में जागरूकता की कमी है। महिला शिक्षक की कमी के कारण भी महिला साक्षरता दर कम है। झारखंड राज्य में जहां 24 जिले, 260 या उससे अधिक प्रखंड हैं तथा 32,615 राजस्व ग्राम हैं, झारखंड में उसी तरह 40 से अधिक मुस्लिम जातियां निवास करती हैं। कुछ जातियों को छोड़कर अधिकतर मुस्लिम जातियों का साक्षरता दर 20-30% या उससे कम है जो आदिम जातियों के जैसा है। आदिम जनजातियों में झारखंड में देखें तो असुर, बिरजिया, बिरहोर, परहिया, कोरवा, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सवर 8 आदिम जनजातियां हैं। मुस्लिम जातियों में जबकि साक्षरता दर जिनका कम है उन्हें डफाली, चोक, कसाब, धुनिया, पमरिया, भटियारा, भाट, चूड़ीहार, लाल बेगिया, रंगरेज, साई, मदारी, मोर्चिकार, मिरियासिन, हलालखोर, नालकंद, सकेलगर, बलखोर, मुकरी, चीक, नाई, दर्जी इत्यादि हैं। इतना ही नहीं, कुछ जातियों के बारे में हमें यह पता नहीं है कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम, जैसे जादूपटिया, कागजी, कोस्ता, जोगी, तमोली, परथा, रिसिया, कुल्हैया इत्यादि। इन जातियों पर शोध की जरूरत है। हर जिला में एक माइनॉरिटी सेल बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय में जागरूकता लाने, हर गांव टोला में इनके लिए स्कूल तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाए तभी इनका प्रगति तथा विकास संभव हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी भाषा, अपनी लिपि या संस्कृति हो उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का पूरा पूरा अधिकार है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 69% है, जबकि इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं की साक्षरता दर केवल 49.4% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार

0: राज्यों के 88 जिले को चिन्हित किया गया है, जहां पर अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर अत्यंत निम्न है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 28 जिले ऐसे हैं जहां इस समाज के खासकर महिलाओं की साक्षरता दर 35% या इससे कम है। इसका कारण यह है कि इनकी एक बड़ी आबादी शिक्षा से लगातार महरूम रहा है तथा बच्चों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। झारखंड राज्य में जनजातियों में ड्रॉप आउट का मुख्य वजह प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षक नहीं समझ पाते और शिक्षक की भाषा बच्चे नहीं समझ पाते। जैसे मुंडारी भाषा जानने वाले बच्चों की भाषा हिंदी भाषा जानने वाले शिक्षक नहीं समझ पाते हैं। अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीनता भी एक मुख्य कारण है। यह समस्या बहुत हद तक झारखंड सरकार द्वारा दूर किया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार भारतवर्ष में 1635 जनजातीय भाषाएं प्रचलित हैं, जिसमें से 197 भाषाओं को संकटग्रस्त भाषा घोषित किया गया है, क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पर हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। आने वाले समय में शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्कूली शिक्षा में से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास की नींव प्रारंभिक बाल्य अवस्था से ही किया जाएगा। माना जाता है कि बच्चों का मस्तिष्क का मैक्सिमम विकास 6 वर्ष से पहले हो जाता है। नई शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम का ढांचा 5+3+3+4 का होगा। शिक्षा अब किसी विशेष तबके या वर्ग के लिए न होकर सार्वभौमिक होगा, जहां सभी लोगों के लिए समान अवसर होंगे। 100% नामांकन होगा। प्रारंभिक कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता एवं बच्चों के समग्र विकास के प्रति उत्तरदायी होना नई शिक्षा नीति के प्रावधान है।
1: श्रोताओं, ये थे डॉक्टर सबीर हुसैन और बता रहे थे शिक्षा सबों के लिए। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हजारीबाग और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। खुशी पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र पर, जहां से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे। 8:30 पर हम

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान

0: 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूल से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश

0: कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीना।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan's Scripps history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
4: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
3: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing

0: in cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Kunal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
1: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
0: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. U.S. forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic. The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
2: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remained stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-dropped ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during the recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in five districts till 9th of June. More from our correspondent.
3: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Keralam. Six districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining three districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Meanwhile, the weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and seal the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Gukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
4: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps, FII, capital gains, withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says P. Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops GoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagul.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyan inscripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। रांची में आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष मतदाता शिविर, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। देश में मॉनसून के दस्तक देते ही झारखंड में बदला मौसम, रांची समेत कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष टीम, झारखंड के आशीष तनीपूर्ति की शानदार हैट्रिक से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अपने प्रवास के दौरान वे रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठकों में भाग लेकर आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। झामुमो द्वारा राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद रांची में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के राजू की मौजूदगी में विधायकों ने आपसी एकजुटता का संकल्प लिया। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि संगठन को, गठबंधन को मजबूत रखने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मतभेद दूर किए जाएंगे।
7: सीएलपी की बैठक, विधायक दल की बैठक हुई है और पहले हमने अपने पार्टी द्वारा चयनित उम्मीदवार का स्वागत किया है और थोड़ी बहुत बात जो गठबंधन में दूरी दिख रही है, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि गठबंधन दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं उनसे समय लेकर के यह जो आपस की दूरी बढ़ी है, यह दूरी भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा देगा, हम सबको इस दूरी को पाटना चाहिए।
6: इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि पार्टी ने कांग्रेस के साथ हमेशा एक तरफा प्यार निभाया है। उन्होंने दोनों राज्यसभा सीटों पर झामुमो का हक जताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी।
8: इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे। कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा, आज भी यथास्थिति, लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला।
6: रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए प्रत्याशी जल्द घोषित होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के विवाद के बीच भाजपा ने आंकड़ों की कमजोरी के बावजूद अपनी जीत का दावा किया है।
9: कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव में जो निर्णय हुआ है कि प्रत्याशी दे रही है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और मुझे लगता है कि आज देर रात या कल सुबह तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हमारे प्रत्याशी घोषणा होते साथ माननीय सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक साथ नॉमिनेशन में उसमें हम लोग करेंगे।
6: झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नई इनाम योजना की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और उत्पादन की सूचना देने वाले आम लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इसके दुष्परिणामों से बचाना और समाज में नशीले पदार्थों की मांग को कम करना है। रांची में नशे के खिलाफ दो दिवसीय विशेष मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीआईपी और रिनपास के विशेषज्ञों ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। विशेषज्ञों ने कहा कि तनाव और सामाजिक समस्याओं के कारण युवा भटक रहे हैं, लेकिन सही काउंसलिंग और उपचार से नशा मुक्ति संभव है। रांची जिला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों ने नगड़ी क्षेत्र के एक कारोबारी से वर्चुअल कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। एएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तुपोदाना क्षेत्र से दोनों को धर दबोचा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला में तीन जिलों के जनजातीय मामलों की सुनवाई की। उन्होंने गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा से जुड़े भूमि विवाद और शिक्षा जैसे 16 मामलों की समीक्षा की। बैठक के बाद डॉ. लकड़ा ने बताया कि अधिकारियों को जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
10: अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा गुमला जिला का लगभग 16 के गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिला मिलाकर के लगभग 16 केसों का सुनवाई की है और उसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो प्राय केस जमीन से रिलेटेड थे, एजुकेशन से थे और जाति सब के माध्यम से थे। ऐसे अगर देखा जाए तो जमीन से रिलेटेड थे।
6: रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता के लिए राजनीतिक दलों से सक्रिय भागीदारी और बीएलओ से समन्वय का आग्रह किया। गिरिडीह में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान को लेकर जिला प्रशासन और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जिला उप निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने पीरटांड में बीएलओ के साथ बैठक कर मैपिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए।
11: ब्लॉक में बीएलओ एवं सुपरवाइजर बैठक किया। इस बैठक के दौरान कुछ खामियां पाई गई, साथ ही मैपिंग भी यहां पे कमी है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां 70% कम मैपिंग हुई है, उसको हम हिदायत दिए हैं कि अभिलंब जो आप मैपिंग को बढ़ाएं। साथ ही एनडीकेसी बहुत ज्यादा मिल रहा है, उस संदर्भ में डॉक्यूमेंट कलेक्शन की भी लोगों को बात कही है और बीएलओ इसमें त्वरित रूप से काम करने का निर्देश है।
6: वहीं भाजपा और झामुमो कार्यकर्ता भी मतदाताओं की मैपिंग के लिए अभियान चलाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची में पर्यावरण संरक्षण की धूम रही। झारखंड जैगुआर ने टंडर ग्राम में आईजी अनूप बिरथरे की अगुवाई में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण दूत बनने का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। मौसम। देश में मॉनसून के आगमन के बाद झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची तथा आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका।

0: का है जो मॉनसून के आगे बढ़ने के अनुकूल है। जापान में अंडर-18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में झारखंड के आशीष तनिपूर्ति ने अंतिम क्वार्टर में शानदार हैट्रिक लगाकर भारत को जीत दिलाई। वहीं महिला टीम पेनाल्टी शूटआउट में चीन से हारकर बाहर हो गई। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में राज्यसभा चुनाव में उत्पन्न सीट विवाद की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्यसभा चुनाव में रार, झामुमो बोला, एक तरफा प्यार कब तक, दोनों सीटों पर ठोका दावा। प्रभात खबर के शब्द हैं, नहीं रुक रहा प्रिंस खान की धमकियों का सिलसिला, रांची में दो बड़े कारोबारियों के बाद अब चंद्रगुप्त परियोजना के अधिकारी से मांगी रंगदारी। हिंदुस्तान ने लिखा है, बोकारो के नीलकंठ विश्व बैंक में भारत के ईडी बने। दैनिक जागरण लिखता है, बाइक खरीदवाने की जिद में युवक चढ़ा टावर पर, चार राज्यों की बिजली रही ठप। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से दो दिन से झारखंड दौरे पर, रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। रांची में आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष मतदाता शिविर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। देश में मॉनसून के दस्तक देते ही झारखंड में बदला मौसम। रांची समेत कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और जापान में अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष टीम। झारखंड के आशीष तनिपूर्ति की शानदार हैट्रिक से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था। मुझे वहां पहुंच

0: तो मेरा मन कर गया हाँ अब तो इस आदमी को जाना है पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
1: संदेश से पूर्व आप सुन रहे थे
2: आकाशवाणी का, ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, जिसका सफर आपने तय किया अपने दोस्त सुनील के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

आकाशवाणी का ये हजारी बाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते अपने मुंबई केंद्र पर, थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
3: सफाई के बाद मनरामा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
2: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
3: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे, लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं की बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
2: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
3: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
2: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
3: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं, और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
2: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
3: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
2: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
3: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है, तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
2: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े, कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
3: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
2: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
3: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
2: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
3: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा, उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
2: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया। किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में कौसिर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं साजिद वाजिद और फिल्म का नाम है दावत-ए-इश्क़।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

कृष्ण मुंबई आ गए, फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
5: शुक्रिया, शुक्रिया।
4: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र कृष्ण साहब के जन्मदिन पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम वो भूली दास्तां। एडिटिंग और मिक्सिंग है अभिषेक कुमार की, भेंट करता और प्रस्तुत करता है राजीव कुमार। कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति है श्री राजेश दुग्गल सुपुत्र राजेंद्र कृष्ण की। तो आइए सुनते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां।

0: जी हाँ, मशहूर गीतकार, डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर राजेंद्र किशन साहब की हम बातें कर रहे हैं दोस्तों। आज 6 जून को उनका जन्मदिन और इस खास मौके पर आप सबों के बीच आ रहे हैं राजेंद्र किशन साहब के बेटे राजेश दुग्गल जी। तो राजेश दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आपको आकाशवाणी हजारीबाग के तमाम सदस्यों और श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत नमस्कार।
1: आकाशवाणी हजारीबाग चैनल के श्रोताओं को और राजीव जी, आपका प्रोग्राम सुनने वालों को राजेंद्र कृष्ण जी के बेटे राजेश दुग्गल का नमस्कार, प्रणाम।

0: तो बातों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं राजेश दुग्गल जी, सबसे पहले अपने पिता राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में कुछ बातें शेयर कीजिए।
1: राजेंद्र कृष्ण जी प्री पार्टीशन इंडिया गुजरात डिस्ट्रिक्ट जलालपुर जट्टा में पैदा हुए थे, वहां से शिमला चले गए जहां कुछ साल रहकर वो बंबई आ गए करीबन 1942-1943 में। 1947 में उनके दो फिल्में रिलीज हुए, जनता और जंजीर।
0: अच्छा।
1: गीतकार कमर जलालाबादी जी के साथ कई फिल्मों में दोनों ने साथ गाने लिखे, जैसे आज की रात, प्यार की जीत, बड़ी बहन वगैरह, और इन सभी फिल्मों के गाने बहुत कामयाब हुए। मगर राजेंद्र कृष्ण जी की सबसे बड़ी हिट एक नॉन फिल्मी गाने से हुई, जो कि रफी साहब की आवाज में और हुसनलाल भगत राम जी के कंपोजिशन थी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी।

0: सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस गीत ने तो दुगल साहब उस वक्त देशवासियों की आंखें नम कर दी थी और ये गीत काफी मशहूर हो गया था।
1: बिल्कुल, इस गाने के मशहूर होने के साथ साथ पिताजी और रफी साहब की दोस्ती भी बहुत अच्छी पक्की हुई। टोटल रफी साहब के साथ राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे हुए 343 गाने, 343 सॉन्ग्स रफी साहब ने गाए हैं, जिसमें आ गए सोलो और ड्यूएट्स दोनों आ गए।

0: प्रसिद्ध गीतकार राजिंदर कृष्ण साहब का जन्मदिन। लोगों के दिलों में बसने वाले राजिंदर कृष्ण साहब और आप राजेश दुग्गल जी, उनके बेटे, उनके पुत्र, आपको कैसा महसूस होता है इतने बड़े गीतकार और संवाद लेखक राजिंदर कृष्ण साहब के पुत्र होकर?
1: राजीव जी, दिल मेरा गर्व से और खुशी से भर जाता है कि मैं उनके लिखे हुए गानों के मार्गदर्शन से जिए जा रहा हूं। जैसे कि राजा हो या रंक, सभी का अंत एक सा होए, या अपनी अपनी किस्मत लेकर दुनिया में सब आए, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की।
0: यानी दुग्गल साहब, आप चौकीदार फिल्म के उस गीत की बात कर रहे हैं जिसे गाया था मोहम्मद रफी साहब ने।
1: बिल्कुल, इसके बारे में मेरा कहना और मानना है

मेरे बाल खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर, मेरा दिल भर आता है उनकी लिखी हुई ऐसी बातें सुनकर और

0: दुग्गल साहब, आप थोड़ा राजेंद्र कृष्ण साहब के परिवार के बारे में संक्षिप्त रूप में अपने भाई बहनों के बारे में बताएं, हमें बड़ी खुशी होगी।
1: हाँ हाँ राजीव जी, राजेंद्र कृष्ण जी टोटल 4 भाई और 1 बहन थे। शायद पिताजी ने सोचा उन्हें लाइफ में और बड़ा होना है, तो उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। मैं 5 नंबर पर तीसरा बेटा हूँ। मेरे 2 बड़ी बहनें और 4 भाई हम लोग हैं।
0: अच्छा।
1: सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का काम करके रिटायर हुए। 2 साल मुझसे बड़ा राजीव टीवी सीरियल, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स और एडवर्टाइजमेंट के जिंगल्स के म्यूजिक देते रहे।
0: क्या बात है।
1: उनकी वाइफ, मेरी भाभी और बच्चे सब सिंगर्स हैं, और हाल ही में AR रहमान के Nexa 4 प्रोजेक्ट में भाई के बच्चे शामिल हुए हैं।
0: अच्छा।
1: छोटा भाई ड्रमर था इंडिया की नंबर 1 रॉक बैंड इंडस क्रीड का।
0: क्या बात है।
1: और वो भी एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स का कंपोजर रह चुका है।
0: वाह।
1: मेरा काम आर्ट पेंटिंग्स का रहा, और अब पिताजी के गाने और डायलॉग लोगों के साथ बांटने में लगा हूँ प्रोग्राम्स के माध्यम से।
0: ये दुग्गल साहब, डायलॉग की जहाँ तक बात है तो कई फिल्मों के दमदार डायलॉग राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखे। एक बड़ी ही सुपरहिट फिल्म आई थी खानदान। इस फिल्म में संयुक्त परिवार के बिखरने के दर्द को बयां किया गया था, और इस फिल्म के डायलॉग राइटर आपके पिताजी थे।
1: हाँ जी राजीव जी, संयुक्त परिवार के टूटने के दर्द को बयां करने वाली फिल्म थी खानदान, और इस दर्द की झलक मिलती है पिताजी के लिखे हुए डायलॉग में, जो बहुत ही चर्चा में रहे।
2: अब मुखिया जी जल्दी कीजिए ना, आप इन लोगों को बंटवारे का कागज पढ़कर सुना दीजिए। आपके पंचायत के पंचों के सामने स्वर्गवासी राम स्वरूप के बेटे जीवनदास और शंकर के घरबार, जमीन और जायदाद के 2 हिस्से बराबर बराबर किए जाते हैं। इन दोनों भाइयों के पास काश्तकारी की 100 एकड़ जमीन है। इस जमीन के 2 बराबर हिस्से 50-50 एकड़ दोनों भाइयों में बांटे जाते हैं। इसी तरह गाय, भैंसों, घोड़ों, बैलों, बकरियों और घर के बर्तनों का आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों के नाम किया जाता है। इनका जत्ती मकान जो इस गांव में है, इसके दरमियान दीवार खड़ी करके इसके 2 बराबर के हिस्से किए जाते हैं। आज के बाद ये एक दूसरे के हिस्से में दखलअंदाजी नहीं करेंगे। मंजूर है?
3: खामोशी का मतलब है मंजूरी।

शंकर, अब तुमसे किसी ना किसी तरह मैंने इस घर की इज्जत को बनाए छुपाए रखा। क्या होता था सिर्फ घर की दीवारों को ही मालूम था। इस घर की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई थी, लेकिन आज सारे गांव, सारी बिरादरी को यह पता चल गया है कि हमारे घर में बर्तन कितने हैं,

0: कपड़े कितने हैं शंकर? जायदाद बट गई, ठीक है, घर के दो टुकड़े हो गए, ठीक है, लेकिन शंकर इस दुनिया में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो हमारे दिलों के टुकड़े कर सके, हमारे प्यार को तकसीम करते। शंकर तुम घर के इस हिस्से में रहो या मैं घर के उस हिस्से में, हम बेटे तो दोनों राम स्वरूप के ही रहेंगे, भाई से दिल का प्यार कोई नहीं तकसीम कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। शंकर सच कहता हूं, क्या करूं शंकर, ये जो कुछ हो रहा है हालात की मजबूरी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे गलत मत समझना भैया, मुझे माफ कर
1: सड़को सड़को।
0: ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे शरीर के दो टुकड़े कर दे, एक टुकड़ा मेरे हिस्से वाले घर में रहे और दूसरा आपके। नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता।
2: तू अकेला कहाँ है शंकर? मैं अभी जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ, सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं।
0: भैया
3: अजीब बरसाती लोग हैं, रो रो कर सारे घर में कीचड़ कर दिया है। अरे जन्म जन्म से हल चलाने वालों, मुस्कुराओ के अब एक दूसरे की रोटियां नहीं गिनोगे।
4: जीवन दास, आपके घरेलू झगड़ों से पंचायत का कोई संबंध नहीं, आप लोगों ने कहा और हमने इंसाफ से तुम्हारे हिस्से तकसीम कर दिए।
3: ठहरिए मुखिया जी, आपने इंसाफ तो किया है लेकिन पूरा पूरा नहीं, मेरी बहन के साथ बेइंसाफी हुई है।
4: वो कैसे?
3: शाम की शादी मेरी बहन नीलमा के साथ होने वाली, शंकर के हिस्से में से आधा हिस्सा शाम का है और आधा गोविंद का, तो क्यों ना इन दोनों भाइयों का हिस्सा अभी कर दिया जाए, वरना कुछ दिनों के बाद पंचायत को फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी।
0: नवरंगी, तू कौन होता हम दो भाइयों का हिस्सा बांटने वाला? अभी हमारा बाप हमारे सर पर है।
3: लेकिन हमेशा तो तुम्हारे सर पर नहीं बैठा रहेगा। देखो आज तुम्हारा बाप अपने भाई से अलग हो रहा है, कल तुमको अपने भाई से अलग होना पड़ेगा, ये तो जमाने का दस्तूर है। और अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो जाओ पूछ लो अपने भाई से, जाओ।
0: शबू इधर, ये क्या समझता है कि शबू और गोविंद दो है? शबू मुंह बंद कर दे, इस आदमी का मुंह बंद कर दे।
5: बोल शबू, बोल बोल।
6: मुझे मेरी तरफ से ये जो कुछ भी कहेंगे मुझे मंजूर है।
5: शाम, ये तू बोल रहा है? इस दिन के लिए मैं तेरी खातिर रातें जागी, अपना खून पिला पिला कर तुझे पाला, जब गोविंद के एक हाथ और पांव की ताकत मारी गई तो मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई। तेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखों के आंसू थम गए, मैंने सोचा भगवान ने गोविंद की मदद के लिए तुझे जन्म दिया है। मैं समझती थी तू अपने भाई को कदम कदम पर सहारा देगा, लेकिन आज तू इसकी बातों में आकर अपनों को भूल गया। बोल, तू गोविंद से हिस्सा बांटेगा, इसे बेसहारा छोड़ देगा? बोल, बांटेगा हिस्सा, बांटेगा?
0: हाँ बांटूंगा, बांटूंगा, बांटूंगा, बांटूंगा।
5: बांट ले हिस्सा, बांट ले हिस्सा, बांट ले। अपनी माँ के प्राण निकाल कर भरे बाजार में नीलाम कर दे।
6: माँ, माँ कर गोविंद की माँ, जब अपना खून ही पराया हो गया तो दुनिया को क्या तमाशा दिखाता, कर दो इनके भी हिस्से। तू भी सुन ले, आज से न तू हमारा और न हम तेरे, और पंचो ये भी लिख दो इस कागज में कि मेरे मरने के बाद ये मेरे मुर्दा शरीर को भी हाथ नहीं लगा सकता, मुझे आग देने का भी अधिकार नहीं इसे, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा।
5: बाबा, बाबा।

राजेश जी, राजिंदर कृष्ण साहब के लिखे गीतों की संख्या काफी बड़ी है। लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देशभक्ति गीत,

0: प्रेरक गीत या फिर कॉमेडी सॉन्ग। उन्होंने जैसे भी गीतों की रचना की, करीब करीब सारे गीत लोकप्रिय हुए और लोगों की जुबान पर छाए रहे। इन्हीं गीतों की भीड़ में कोई ऐसा गीत जिसे सुनना और गुनगुनाना आपको बहुत अच्छा लगता हो?
1: राजीव जी, मेरी माँ बहुत धार्मिक विचार की थी। मैं उनके साथ मंदिर और कथाओं पर जाते रहता था। भक्ति गीत और रफी साहब दोनों मेरे दिल में बसे हुए थे। फिल्म खानदान का बड़ी देर भई नंदलाला सुनिए।

0: दुग्गल साहब, सुना है कि आपके पिताजी राजेंद्र कृष्ण साहब को घोड़ों की रेस देखना और हॉर्स राइडिंग काफी अच्छा लगता था। थोड़ा बताएंगे इस संबंध में, अपने पिताजी के अन्य शौक और स्वभाव के बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: उनके जैकपॉट के बारे में ये बता दूं कि वो एक दिन NSCI क्लब में ST नारंग साहब के कमरे में गाना लिख रहे थे और वहां से रेस को सामने दिख रहा था और पिताजी ये बात कह गए कि यहाँ मेरे पैसे बहुत जमा हुए हैं, एक दिन मैं आकर ले जाऊंगा। उन्हीं दिनों के बाद की बात है जब गुलशन राय जी की जॉनी मेरा नाम के लिए उन्होंने गाना लिखा, ओ मेरे राजा खफा ना होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया।

0: शायद ये गाना एक तरीके से आगे चलकर उनके नसीब से उन्हें वो जैकपॉट दे गया। जैकपॉट का अमाउंट था 48,74,600 and something।
1: अच्छा,
0: ये टैक्स फ्री होते हुए उस जमाने में पिताजी ने लाख रुपए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर्स फंड में खुद रूबरू मिलकर उन्हें दिए। और बस इंदिरा गांधी जी को जब ध्यान में आया कि ये सब टैक्स फ्री पैसे हैं जो वो दे रहे हैं, उन्होंने फॉरेन टैक्स लगवा दिया 33% रेस कोर्स इनकम पर।
1: अच्छा,
0: एंड ऑटोमेटिकली सब रेस गोअर्स जो थे वो पिताजी के एक तरीके से खिलाफ ही हो गए, भाई सबके ऊपर वो टैक्स जो पड़ गया। फिर भी पिताजी पैसों की अहमियत कभी नहीं रखी उन्होंने, ना कोई गर्व या घमंड पैसों की। पैसों को लेकर उन्होंने कई सारे गानों में जोड़ तोड़ डाल रखी थी।
1: अच्छा,
0: जैसे लेने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है बोलो जो पैसे का यार नहीं।
1: तो आइए दुगल साहब श्रोताओं के साथ इस गीत का आनंद लेते हैं।
2: लेने से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, ये ऐसी चीज है।

0: लेने से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं। यदुगल साहब, इसी तरह वैजयंती माला की एक पहली फिल्म का भी गीत उन्होंने लिखा था, थोड़ा बताएंगे?
1: बिल्कुल, 1951 की फिल्म बहार, जो कि वैजयंती माला की पहली हिंदी फिल्म थी, उसमें उन्होंने एक ऐसा गाना लिखा था, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। आप सोचिए, पार्टीशन को तो 4 साल हो गए थे, बहुत लोग ना उम्मीद उस समय जो हुए थे। एक टैक्सी ड्राइवर डीएन मधोक साहब, जो गीतकार उस समय सबसे मशहूर थे, उनके साथ बैठे हुए थे जब ये गाने के बारे में जिक्र हुई, तो टैक्सी वाला डीएन मधोक साहब से कहते हैं कि मधोक साहब, ये गाना तो आपने ही लिखा होगा। और मधोक साहब का जवाब ये था कि नहीं भाई, कोई नया लड़का पंजाब से आया है और लगता है हमें वापस पंजाब ही भेज देगा। ये तो रही मजाक की बात, मगर पिताजी के पैसे की एक तरीके से नजरिया जो था वो उनके गानों में कूट कूट के दिख जाता है कि उन्होंने पैसे को अहमियत कभी नहीं दी।

0: ये राजेश जी, राजेंद्र कृष्ण साहब ने कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, सी रामचंद्र, शंकर जय किशन, रवि, रोशन, हेमंत कुमार, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन, सचिन देव बर्मन, आर डी बर्मन, चित्रगुप्त और सलीलदा, या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हर संगीतकारों के साथ देखिए उनकी जोड़ी फिट बैठती थी, फिर भी किस संगीतकार के साथ काम करना उन्हें ज्यादा अच्छा लगा और किस संगीतकार के साथ उनके गीत ज्यादा पॉपुलर हुए, थोड़ा इस संबंध में आप अपनी ओर से कुछ कहें।
1: राजीव जी, इसके बारे में मेरा कहना और मानना है कि मदन मोहन जी के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी।
0: अच्छा,
1: मदन मोहन जी और राजेंद्र कृष्ण जी के नेचर में कई सारी सिमिलैरिटीज थे। पंजाबी होते हुए खाने पीने और रेस कोर्स जाना और ताश खेलना, सभी चीजें इकट्ठा दोनों की समान थी। इसलिए हम लोग थोड़े ही फासले पर रहते थे मदन मोहन जी के घर से। पिताजी उनके यहाँ अगर सिटिंग के लिए जा रहे होते तो अपने आप को काफी खाली पेट जाते थे, क्योंकि मदन मोहन जी बहुत ही बढ़िया कुकिंग करते थे और इसलिए उस उम्मीद से पिताजी वहां पर जाते थे कि वहां तो खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है। साथ में सिटिंग से पहले उनके पहले थोड़ी थोड़ी ताश हो जाती थी, थोड़ी हंसी मजाक हो जाती थी, जो कि पंजाबियों में ज्यादातर आप देखेंगे उस नेचर के हैं, तब जाकर उनकी सिटिंग शुरू होती थी। मदन मोहन जी का ये कहना था कि ज्यादातर वो सभी राइटर

0: इसके लिए अपनी धुन पहले रिकॉर्ड करके उन्हें बतलाते थे। मदन मोहन जी का कहना था कि वो ज्यादातर अपनी धुन पहले तैयार करके फिर राइटर से गाने लिखवाते थे, लेकिन राजेंद्र कृष्ण जी के लिरिक्स आने पर वो अपनी धुन बनाते थे। ये थी उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग।
1: क्या बात है।
0: उनका मानना था कि उनकी लिरिक्स उनको इंस्पायर करती थी अलग किस्म के संगीत के लिए। मदन मोहन जी की पहली हिट फिल्म भाई भाई के लिए पिताजी उनको साउथ ले गए थे, AVM प्रोडक्शंस की फिल्म। और उसके अलावा उन दिनों में ऐसी पिक्चरें आई जैसे पॉकेट मार, देख कबीरा रोया, गेटवे ऑफ इंडिया, अदालत और जेलर जैसी फिल्में बहुत मशहूर हुए ये गाने। ये इन दोनों की दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग का ही कमाल था।
1: सचमुच
0: मदन मोहन जी की पहली हिट भाई भाई में ऐसे गाने थे, गीता दत्त जी का ए दिल मुझे बता दे, किशोर कुमार और लता जी के मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मजाकी गाना, और लता जी के कदर जाने ना मोरा बालम, जिसके लिए बेगम अख्तर साहिबा ने उस जमाने में ट्रंक कॉल करके मदन मोहन जी से लंबी चौड़ी बात करी थी। ये जिक्र तो सभी जानते ही है, इसकी जिक्र बार बार हर जगह होती ही है।

0: राजेश जी, राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी गीत लिखते थे, उन गीतों के बोल, उन गीतों की पंक्तियां लोगों की जुबान पर चढ़कर मुहावरों में बदल जाते थे। हमारे दिल के एहसासों को बयां करने का एक नया तरीका भी दे जाते थे। पल पल दिल के पास, जैसे प्यार भरे गीत की हम बात करें, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, जैसे गीत की बात करें, तो ऐसे गीतों ने अगर दिलों से दिलों को जोड़ा है तो किसी चाहने वाले की खामोशी भी तोड़ी है। और कभी कभी कुछ गीत समाज में जुमले की तरह प्रयोग किए गए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में
1: राजीव जी? उन्हीं के मुहावरे, उन्हीं के डायलॉग्स फिल्मों के मेरे दिल में जो बसे हैं वो उभर के आते हैं। पड़ोसन का वो डायलॉग, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, मेरी जिंदगी में तो ये डायलॉग एक तरीके से जुमला बन के ही रह गया है।
0: अच्छा।
1: मगर एक बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ या तो मेरे पास जवाब नहीं है और या जहाँ पर मैं निराश हो सकता हूँ, उस समय यही ध्यान आता है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, पड़ोसन फिल्म का डायलॉग।
2: जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है।
3: अब क्या हुआ?
2: हुआ ये कि बिंदु के इम्तिहान का रिजल्ट अखबार में छपा हुआ है, फेल हो गई।
3: चलो अच्छा हुआ, मैं तो लड्डू बांटूंगी लड्डू।
4: ओफो, लेकिन तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? बल्कि मुझे तो फेल होने की खुशी है, अगर पास हो जाती तो और पढ़ना पड़ता, अब तो मैदान साफ।
3: अच्छा। मैं लड़की को आगे पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, सीधी सी बात है। आप जल्दी से कोई लड़का ढूंढिए और उसके हाथ पीले करिए, समझे?
2: अगर तुम्हें सास बनने का शौक है तो मुझे भी ससुर बनने का शौक है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का भी तो मिलना चाहिए।
5: जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण।
2: श्रीमान, आपने मुझे पहचाना? आपके कपड़ों से तो ऐसा मालूम होता है कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन पंडित जी अब छतरी तो बंद कर दीजिए।

0: कुंवर प्रताप सिंह जी है।
1: अच्छा उम्र क्या है?
0: उम्र अजी उम्र तो अभी दंत बैठक निकालने की है।
2: और उसकी आमदनी क्या है पंडित जी?
0: आमदनी अजी आमदनी तो इतनी है कि अगर सारी जिंदगी दोनों हाथों से दौलत उठाए तब भी 15-20 लाख रुपया बच जाता है। जय राधे कृष्ण। ये देखिए मैं उनकी मनोहर छवि भी लाया हूँ। जय राधे कृष्ण।
1: पंडित जी ये तस्वीर कुछ पुरानी मालूम होती है।
0: जी बात यह है ये तस्वीर बहुत दिनों से दरिद्र ब्राह्मण के मैले थैले में पड़ी थी।
2: जरा मैं भी तो देखूं। पंडित जी आपको तो तसल्ली है ना?
0: आप चिंता मत कीजिए ये घर मेरा ठोक बजाकर देखा हुआ है।
2: ठीक है तो फिर ये तस्वीर आप यहाँ छोड़ जाइए, हम अपनी लड़की की मर्जी भी तो मालूम कर लें।
1: ठीक है
0: जो आपकी इच्छा, मैं 2-4 दिन में पता लगाता हुआ जाऊंगा। जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण।
3: 1957 में एक फिल्म आई थी आशा, और उस फिल्म का एक गीत ईना मीना डी का आज भी लोगों की जुबान पर है। इस गीत की लोकप्रियता का आलम यह है कि इस गीत के नए वर्जन भी आए और अभी हाल ही में ईना मीना डी का फिल्म भी बनी। राजेंद्र कृष्ण साहब ऐसे कालजयी गीतों की रचना कैसे कर लेते थे? सुना है इस गीत के पीछे एक रोचक प्रसंग भी है, थोड़ा शेयर कीजिए।
4: राजीव जी श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही। शुरुआत की फिल्मों में अनारकली के 12 में से 7 गाने पिताजी के थे।
3: अच्छा।
4: उसमें जहां काफी सीरियस गाने थे, ये जिंदगी उसी की है, जाग दर्द इश्क जाग, और फिर वो लता जी के कमाल की शराबी वाले गाने की गायकी, मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक फॉरेन बीट्स साउथ अमेरिकन बीट्स के साथ में बहुत मशहूर हो रहा था। और पिताजी के साथ उनकी खाने पीने की और बाकी सारे शौक मतलब कॉमन थे, अच्छी जमी उनकी।
3: वाह।
4: बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी जिससे आगे चलकर एक गजब का गाना भी बन गया फिल्म आशा में ईना मीना डी का।
3: अच्छा।
4: ईना मीना डी का जैसे बोल पिताजी को सुनने में मेरी बड़ी दीदी पप्पू दीदी आदर्श प्राशर, वो अपनी सहेली नजमा के साथ कोई साउथ अमेरिकन टाइप की गेम खेल रही थी जो कि इंग्लिश की एक पॉपुलर गेम इनी मीनी माइना मो जैसे लग रही थी, वो बोल पिताजी ने पकड़ लिए।
3: वाह क्या बात है।
4: एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो बोल को लेकर बन गया गाना और वो रॉक एंड रोल म्यूजिक जो श्री रामचंद्र जी ने डाला था धूम मचा गई।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो। मीना मीना डी।

0: राजेश दुग्गल जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपको आकाशवाणी हजारीबाग के तमाम सदस्यों और श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे, इसी बात की उम्मीद और कामना।
1: राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिताजी राजेंद्र कृष्ण जी पर केंद्रित ये प्रोग्राम में मुझे शामिल किया, और आकाशवाणी हजारीबाग का शुक्रगुजार हूँ और सारे आपके श्रोताओं को भी जो मेरी बात को इतने प्यार से सुन चुके हैं। बहुत आनंद मिला है आप सब से बातें करने में। आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर बहुत खुशी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।

आज की मुलाकात बस इतनी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र कृष्ण साहब के जन्मदिन पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम वो भूली दास्तां। एडिटिंग और मिक्सिंग अभिषेक कुमार की थी, भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार, और इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति रही श्री राजेश दुग्गल सुपुत्र राजेंद्र कृष्ण की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में दिन के 11 बजने वाले हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आइए अब हम आपके लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र पर। थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: विविध भारती पर

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: यह आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: खत लिख दे।
4: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु मोहित।

0: हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमिन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे। और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुख वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो हैं राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमिन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्त्रबुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया, शांतनु मोइत्रा ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला।

0: तो मैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी, तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है और अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद जरूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाया देता है जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं, जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है। ये है थ्री इडियट्स फिल्म का आखिरी गीत, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे की रचना, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगम नेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगम नेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
4: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं और आपकी टिप्पणियां आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है कभी समय से पहले कुछ हो जाता है तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है, तो ऐसा नहीं है। जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, बस यही जीवन दर्शन है। इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची, तो छोटी सी इबारत थी क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू दे दिया और उसको जानकर आप भी देखिए कितने कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी पसंद की गीतों से मेल खा रहे हैं, यानी यूं कहें कि अब हमारी पसंद मिलने लगी है। यही तो होता है संगत का असर, हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो। आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं, लेकिन हाँ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

0: अपने सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे
1: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ रुपए के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी, परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे थोड़ी देर बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। इसके बाद वे प्रदेश कोर कमेटी से विमर्श करेंगे और शाम को प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।
2: 2 दिन तक लगातार जो मंथन होगा, हम सबको कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से तजुर्बा भी बहुत है, तो उस तजुर्बा और पार्टी का की आइडियोलॉजी के अनुसार कैसे और हम सब आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा।
1: रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
3: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्परेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से 2-3 साल में कम्प्लीट होगी।
1: गिरिडीह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी है। उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 15 करोड़ रुपए से भव्य रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा।
4: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा उसरी नदी का जो संरक्षण और ये पर्यावरण का जो उसमें देख रहे होंगे स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध, और उसमें एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये 2 योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से चल रहा है।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक के 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्यभर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। रामगढ़ जिले से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित 4 टन आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। उपायुक्त ऋतुराज ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले 4-5 वर्षों से यह योजना चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मेहनत से आज बेहतर फल मिल रहे हैं, जिसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।
6: राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत हम लोगों ने 4 से 5 सालों से जो हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने किया है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे लोगों ने अपने एकड़ एकड़ की जमीनों में आम लगाया। आज वो उसका फल जो है देखने को हमें मिल रहा है, जिसमें कि हमारे रामगढ़ जिले के गाँव का आम कल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, दुबई के मार्केट में भेजा गया है। हम लोग और भी एजेंसी से बात कर रहे हैं जो इसको आगे अन्य देशों में भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: रांची के ऑड्री हाउस में जनगणना में पोस्ट कार्ड के ऐतिहासिक योगदान पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न दशकों के जनगणना से जुड़े पोस्ट कार्ड, डाक सामग्री और जागरूकता अभियानों को चलचित्र तथा चित्रों द्वारा दर्शाया गया, जो डिजिटल युग से पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाने का मुख्य माध्यम थे। फिल्म निर्माता मेघनाथ ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां नई पीढ़ी को पारंपरिक संचार साधनों के ऐतिहासिक योगदान से अवगत कराती हैं।
7: 50-70 साल पहले हमारे पास क्या था, अखबार भी कम था, हाँ एकमात्र पोस्ट ऑफिस था, घर गांव में जाता था कुछ ये, तो कोई चीज को सबके पास पहुंचाने के लिए पोस्टल सर्विस ही एक अच्छा ये जरिया था। तो हमारे सरकार पोस्टल लिफाफा पोस्ट कार्ड इसके ऊपर में लिख देते, देखो ये होने वाला है, आप आओ।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। खेल जगत में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। जापान अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय महिला टीम ने कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। झारखंड की संदीपा कुमारी बेस्ट प्लेयर चुनी गईं। घरेलू खेलों में झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। उधर पतरातू में 30 टीमों वाली भव्य छोटा नागपुर सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग का शुभारंभ हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स, गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ के सीवरेज प्लांट को मंजूरी, झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी, परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध, सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून, और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही है। मंदाकिनी जी, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं, वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि अपनेपन और सांत्वना की बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। वो मिलती है कि नहीं, ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाए। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़े। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

0: रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी है अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता, इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे रे मन, मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है, आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई, वैसे रोज सुबह आ जाती है मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी, मिली ठंडक आपको। वही एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है, सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है, ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है, रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा। और इसी तरह हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख जरूर आता है, सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यो ज्यो याद आएंगे जोड़ते जाएंगे, सूरज रे जलते रहना फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नधीर धरे, और आपने और भी गानों के बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने, गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे,

जी, तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में, जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है, एक बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आरामदेह सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती, भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है, कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का, मन ढूंढता एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा, फिर नजर उठती है आसमान की ओर जहाँ सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है, तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रही है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है, रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग, जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो तो संभव है, लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है, लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है, वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए? सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो ताही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी? बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहां कहां से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे, ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने ही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल। आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी, दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है, और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की, सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहां रेडियो बजता रहता है, एफएम रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

सन बन गया था, अब पोस्ट आ गई है। तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाई रे, खाई है रे हमने कसम, जा रे वाह वाह, और बोले रे पपीहरा। तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है, आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था, दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखी रे सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है। बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वही एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है, बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओरे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, रे मन सुर में गा ओरे ताल मिले नदी के जल में, ये तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया। पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है, रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये रे हमारी जान ले लेता है ना,

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा ही गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है सूरज है चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में महबूब के रूप में अपनेपन के रूप में देखता है तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात वो जो प्रार्थना वो जो इल्तिजा वो जो प्रेम की बौछार वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: से मन का बंधन सच्चा, मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यहीं थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गांवों के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

तो पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है।

0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने

0: की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्नाटे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

तालियां, शाम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां, राधा संग कान्हा का रास जहां चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: ये आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज़वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।
2: Oh,

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता, संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सके।
1: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए। तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्पररी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अगले 2-3 साल में कंप्लीट होगी।
0: सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोली स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
2: मोटरसाइकिल पर ला करके अवैध गांजा की बिक्री की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि एक उड़ीसा के टांगर गांव बस्ती का जुलेश्वर अपाट है, वही इस क्षेत्र में गांजा के अवैध आपूर्ति करता है। इस तरह 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है एवं लगभग 36 केजी गांजा बरामद।
0: जापान के काकामिगाहारा में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया। मैच में शानदार खेल दिखाने वाली संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इधर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में खूंटी के आशीष तानीपूर्ति ने लगातार 3 गोल दागकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगह

रे से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। रामसखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल। मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: बिजली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंसी जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियायत तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमीबोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात वे ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, अब की बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी। आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कम से न अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म वाली जा।
3: तस्लीम।
1: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है योर मैजेस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम?
3: जी योर मैजेस्टी।
1: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
3: आलम पनाह। आलम पनाह।
1: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
3: जी जी हाँ, जान पाना हा। यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
3: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं। हम यहाँ आपकी पनाह में रहने चाहते हैं।
1: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
3: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
3: ओह नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
1: तो तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहां जब तक चाहो रह सकती हो।
3: ओ जयपाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
1: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
3: ओ, ओ शुक्रिया आलिम्पिना, आप कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
4: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब के नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
4: जी हाँ आलमपनाह, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
4: जी हां चाहपना, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
4: जहांपनाह,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
4: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
4: जी हां आलमपनाह, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
4: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
4: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
4: बेशक आलमपनाह, बेशक, इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो। बोलो आली खत्री।

0: वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमिली से है? क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ, नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलम पना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां? अब फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ कोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 कोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ। बराबर के खेमे में है वो बदसात?
0: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
0: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थी, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की

0: को मार डालेंगे।
1: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
2: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूरे वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आ लीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी के गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। चैपना का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाय की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाय अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें

0: दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
1: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
0: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
1: शुक्रिया योर मैजेस्टी, फिर हमको इजाजत बख्शे।
0: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खान को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शान शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जाह वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर

0: रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलमपना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें बराई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोली स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस के वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला करते, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। हम चार भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्हें कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके। आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ। और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्ता है। हाँ। अजीब दास मेरी बहने रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तान के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे
1: लिए कुछ भी, मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं

0: था या मुझ में ना बचपन से लेके, क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था,
1: फिर
0: तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो है ना, एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी लिए, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी? 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके, आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन

0: उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझियों में इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
1: हाँ,
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होगा।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
0: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
1: खुश हो
0: तो खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: लेकिन और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता,
1: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जब जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और मैंने कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरे साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर।
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा ना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: पे लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं। हाँ। क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते।
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था, और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: ये गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
2: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी हैं।
2: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मुझे दिखते क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बताने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह। तो मैंने लगा कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
0: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
0: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है वो वाला डांस सेक्शन,
1: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
0: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
1: हाँ। तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो. तो मैंने कहा ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो. ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में. से नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है. नहीं नहीं नहीं ये तुमको आना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे. लेकिन मुझे कुछ नहीं पता. फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो. मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th century क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
0: कहानी है
1: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए.
0: बताइए.
1: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे. पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है.
0: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
1: स्कूल्स
0: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
1: एकदम अलग,
0: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं.

0: हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे? तो आशुतोष ने बोला, क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है? मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है। ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, मैंने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा, मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती की अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली, गाना ए आर रहमान का गाना था वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट में, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। सर आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार बड़ी फिल्म थी
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस थोड़ा
1: सभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पिनी हातिरकी समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02:36 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई इन सबके कार्यक्रम में स्वागत है और साथे प्रणाम जोहार। और आज हमारे साथ हथीन वीरेंद्र भाई, तो तोरो जोहार
1: जोहार जोहार नमाता बहिन। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने सभी किसान भाई बहिन के जोहार नमस्कार। और आज देखा कि बहुत कुछ हम लेकर आवल है कार्यक्रम किसान वाणी में, तो सबसे पहले चीज़ है कि जो आज हम चर्चा करब अल नीनो के पर कृषि पर का प्रभाव है ओकर बारे में, ओकर धान के नर्सरी के बारे में हम इन चर्चा करब। और एक बार देखा कि एक जानकारी भी लेकर आवल है फलदार वृक्ष

0: जेकर में अमरुद के उन्नत खेती के बारे में हम चर्चा करबे और देखा कि फिर बाजार भाव और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में आज हम चर्चा करबे।
1: एकदम सही कहला। तो सबसे पहले हम इन बात करबे कि अल नीनो का है।
0: हाँ।
1: सबसे पहले तो ये जाने के है तो अल नीनो जो है एक मौसमी घटना के रूप में देखल जाए है।
0: हाँ।
1: जेकर में का हो है कि प्रशांत महासागर के गर्म हो के कारण मतलब दुनिया भर के मौसम पर ओकर उल्टा प्रभाव पड़ जाए, उल्टा असर पड़ जाए है। जेकर कारण है से कि हर जगह के मानसून जो है कमजोर हो जाए है, और जब मानसून कमजोर होते तो बारिश भी कम होते, जेकर कारण से बहुत ज्यादा कहला की परेशानी आ सको है कृषि पर, एक असर जो है मतलब एक बुरा असर पड़ सको है। काहे कि जब अगर बारिश कम होते तब तो देखला हर तरह से असर पड़ता है कृषि पर। कृषि का है कि पानी पर निर्भर रहो है, बारिश बढ़िया होता है तब जाके फसल भी बढ़िया हो है।
0: तो देखा कि अल नीनो के बारे में तू बतेला है कि प्रशांत महासागर यानी कि जल ओकर यानी पानी है से धीरे धीरे ओकर गर्म हो जाए, गर्म होवे के चलते जेकरा मानसूनी दबाव जो हो है ओकर चलते तोहरा बंगाल की खाड़ी ओकर हिंद महासागर में सब दबाव ना बढ़े जेकर चलते बारिश के संभावना कम हो जाए। ऐसी भी इन साल मतलब मौसम वैज्ञानिक के अनुभव हैं कि सामान्य बारिश से 30% बारिश कम होते, और जो अल नीनो की ये चर्चा है ये 1875 में एक बार ऐसा मौसम आये जेकर चलते उस समय मतलब कहल जाए कि सूखा की स्थिति रहले, अकाल की स्थिति रहले। तो ऐसा में किसान की अगर यदि इस स्थिति में हम कैसे कम समय में कम पानी ला उत्पादन कैसे करबे ओकर बारे में हमें थोड़ा चर्चा करबे।
1: एकदम। और ओकर से पहले हमें जरूरी संदेश सुनो।
0: हाँ सुनल जाए।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: तो चला बोल रहा
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। तो पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल समेत नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आते जल्दी खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: तो देख लो, इस जरूरी संदेश से पहले हम इन बात कर रहे थे लिए अल नीनो के बारे में। तो अल नीनो के बारे में तो हम इन बात कर ले लिए कि भाई का है वो, अब एकर से का जो है बुरा असर पड़ो है कृषि पर, ये चीज हम इन पहले जान लिए कि एकर से मानसून जो है कमजोर पड़ जाए है, बारिश कम हो है, जेकर कारण से जैसे कि खरीफ फसल है मक्का धान इस सब के रोपाई समय पर नहीं हो पाते। दूसरा चीज है कि बारिश न होए से खेत में नमी खत्म हो जाए है, जेकर से है कि बीज के अंकुरण भी कमजोर पड़ सको है। तो हर चीज के हम इनके ध्यान दिए के है, और एकर में है कि का है कि तापमान बहुत ज्यादा मतलब जितना रहे के चाहिए ओकर से ज्यादा बढ़ जाए है अल नीनो के प्रभाव से। तो एकर में कि पौधा में जो फूल आए का समय रहो या दाना भरे के जो एक प्रक्रिया हो है वो मतलब एक तरह से रुकावट पड़ जाए है ओकर में। तो ये सब चीज हम इनके देखे के है। और दूसरा चीज है कि पौधा में जैसे कि जो कीड़ा लगो है फफूंद लगो है तो इस सब का प्रकोप ज्यादा हो जाए है, और जो हम इनके माटी में जो एक जल स्तर जो रहो है उकर में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए है। तो ये सब चीज एक नुकसान है हम इनके लिए।
0: तो देखा कि ये तो बहुत अच्छा बात तू बतला है कि नुकसान का है से, लेकिन अल नीनो के प्रभाव से अगर हम अगर जैसे खेती करिए तो उकर में हम सबसे पहला विचार अपन में रखिए कि जैसे जो 130 से 40-50 दिन के जो धान लगो लिए अब हमें के 110 से 15 दिन वाला धान लगावे के चाहिए, और उकर में मक्का के हम इन खेती कर सको ही है। जैसे कि अभी मान ला तुम्हारा दो नंबर खेत हो और पानी ना गिर तो एक नंबर अथी दो नंबर और तीन नंबर हो, तो उकर में तू मक्का के खेती कर सको है। एक अलावे फिर मड़ुआ के खेती मोटा अनाज के खेती कर सको है, उड़द के भी खेती कर सको है, ये सब थोड़ा कम पानी में हो वाला, और सबसे कम पानी में अगर कहा जाए अरहर के भी खेती हुए तो अरहर के भी खेती किसान कर सको थे। तो हम इनके

0: करना का है कि हमें बहुत सोच समझ के विचार लिया, क्योंकि अब क्या है कि विज्ञान इतना आगे है कि कल के मौसम का हो वाला है 4 महीना पहले वो किसान के पहले जानकारी आम आदमी के मिल जाए, और उस अगर वो हिसाब से हम करें तो कभी हमें नुकसान ना होते।
1: और एक हमें एक काम और भी कर सको ही है वीरेंद्र भाई, कि हमें जैसे कम पानी में उगे वाला फसल तो तू बता दिल,
0: हाँ।
1: एक साथे साथे का है कि कम पानी में हमें ज्यादा उपज कैसे ले सको ही है।
0: हाँ।
1: तो एक में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल विधि से जो सिंचाई हो है, ये तकनीक हमें अपना के फसल
0: हाँ।
1: उत्पादन कर सको ही है। और दूसरी चीज का है कि हम जैविक खेती करिए, जैविक खेती करे से का है कि जितना भी गोबर खाद अगर माटी में हम इनके जाए है तो माटी में नमी धारण के क्षमता उतना ज्यादा बढ़ो है,
0: हाँ।
1: और माटी के उपजाऊ क्षमता भी बढ़ो है। तो इस सब चीज पर हम इनके ध्यान दिए के है। और देखा कि कार्यक्रम में हम इन आगो भी बनल रहे, अब धर सुनाओ ही है एगो लोकगीत।
0: हाँ, सुनल जाए।
2: आर्यावर सुगना फरार हो जइहें, अरे

0: तो देखला कि लोकगीत के बाद हम इन कार्यक्रम में फिर से हाजिर हुए और अब जो चर्चा करबे वो है कि अब धर धान के समय है तो धान के नर्सरी तैयार करे के सबसे पहले जो जरूरी है ओकर तैयारी पहले से करके रखे के है। तो एकर लेल का है कि पहला तो है कि खेत के गहरा जुताई करे के चाहिए और ताकि मतलब जे भी अंदर के कीड़ा मकोड़ा जमीन के भीतर रहो है सब बाहर आ जाए और कड़ा रौद लगे से वो खत्म हो जाए, मतलब और जे भी घास पात रहो वो भी खत्म हो जाए है। तो एकर लेल का है कि भाई नर्सरी के तैयारी करे ले बढ़िया से एकदम जुताई करके गोबर ओकर में मिलाए गोबर खाद और ओकरा एकदम भुरभुरा कर दिए के है दो तीन जुताई करके और ओकर बाद फिर हम इनके एकर में जे भी काम करे के है वो काम कर सके है।
1: ये बहुत अच्छा बात बतेला है कि गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा बात आज हम इन चर्चा जो करे थे धान के नर्सरी में दो तीन बात के हमेशा ध्यान रखे के चाहिए, चूंकि इन साल सूखा के प्रभाव के असर ज्यादा देखल जा सको है। तो ऐसा स्थिति में किसान के हमें का करना हो, जैसे हमें धान के जो भी बिहन करो हाँ ओकरा तीन टर्म में बिहन करे के, अगर तू 30 किलो बिहन करे था तो ओकरा 10 किलो 5 दिन के अंतराल में फिर 8 दिन के अंतराल में इतनी करके करके आप मतलब धान के बिहन हम कर सकते हैं। धान के बिहन जो है अब एक जो करेक्ट समय है 15 जून से हम एक धान के बुआई कर सको ही है, चूंकि जैसे निर्विसरा नक्षत्र निकलता है ओकर आधरा नक्षत्र पड़ते अभी निर्विसरा नक्षत्र चले लगल है। देखकर में किसान के कोशिश करे चाहिए कि मतलब फसल थोड़ा कम लगावे चाहे, काहे कि निर्विसरा नक्षत्र में का प्राकृतिक प्रकोप से बीमारी ज्यादा लगे है, तो ओकर से बचे खातिर ले या तो पहले ही निर्विसरा नक्षत्र पड़े से पहले ही किसान के जैसे रोहन पड़ल है तो वही खनि भी रोप सकल थी लगा सकल थी है न। एक अलावे जैसे कि तो निर्विसरा नक्षत्र के अलावे जैसे अब है कि हमें के पढ़ते आद्रा नक्षत्र, तो आद्रा नक्षत्र में हम इन हर चीज़ के बिहन कर सको ही है और हर चीज़ हम इन करके अच्छा उत्पादन हम इन ले सको ही है। अब रह गई धान के जो हम इन चर्चा करे थलिए तो धान के बिहन के चुनाव भी करे बहुत अच्छा समय है, ओकर जर्मेशन करके चेक कर लेवे कौन धान लगवे को आपन में चर्चा करके खेत में वही धान लगावे चाहिए किसान के और अच्छा उत्पादन अच्छा मुनाफा हो। तो एकर अलावे धान के अलावे जैसे नर्सरी हम इन करें तो बहुत चीज़ की नर्सरी हो, लेकिन धान के सरी आज एक अलग तरीका से हम इन कर सको ये, जैसे अभी पानी बीच बीच में गिरे तो सबसे पहले गहरी जोताई करके रोटावेटर से भी जोताई करके तैयारी किसान के रखे के चाहिए। अगर वो 30 kg हाइब्रिड धान के बिहन के अगर करो थीं तो उनका एक कट्ठा खेत डेढ़ कट्ठा खेत एकदम बढ़िया तैयार 6 डिसमिल एकदम तैयार कर रखती 6-7 डिसमिल जमीन है न, तैयार करके ओकर में गोबर मिला के और बढ़िया जोताई करके रखती। जैसे 15 तारीख समय क्रॉस हुआ है तो वह 3 पार्ट में बैठ के और थोड़े थोड़े सूखा विधि से बिहन ओकरा करते चल जेथिन, ताकि जैसे मान लो पानी अगर तुहरा 8 दिन लेट से गिर लो तो वो पीछे ला बिहन तू रोप सको, एक बार अगर कर दे तो का हो बिहन थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो जाए जेकर चलते ओकर उत्पादन क्षमता घट जाए। और एक हमेशा ध्यान रखे के चाहिए किसान के कभी भी खेती करो ही तो शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम समय वाला धान के खेती ज्यादा या फसल के ज्यादा करे के चाहिए, चूंकि कम पानी में भी अच्छा उत्पादन हो जाए
0: एकदम। और कम पानी में अगर धान के फसल उपजाए के है तो देख लो जैसे कि अब अगर वैसा नल नीनों के प्रभाव अगर पड़ले है और बारिश कम होए के संभावना है तो हम इन ये भी देख सको ये कि रोपा वाला धान में पानी तनी ज्यादा लगो है
1: हाँ।
0: तो हम इन सीधा बुआई भी कर सको ये हाँ। जेकर में थोड़ा कम पानी लगो है
1: हाँ। तो
0: और अब हम इन जानकारी कितने बढ़ो ये
1: हाँ।
0: कि जैसे कि फल बाग लगावे के भी समय है, समय कला के बाद में लेकिन अब धर ओकर लेल गड्ढा खोद के रखे के समय
1: हाँ।
0: तो जानकारी भी पहले से ही चाहिए। तो फल वृक्ष में जो अमरूद के उन्नत खेती कैसे करल जाए एकर बारे में जानकारी है और ये बताए थथिन डॉक्टर नरेंद्र सिंह और इनकर से बातचीत करे थथिन वीरेंद्र साहू।
1: तो ये जानकारी भरल बात के सुनो ये और समझो ये।
2: किसान मित्रों हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, खेती किसान में बहुत तरह का अंग होता है जिस

0: इसमें कि आज फलदार वृक्ष पौधों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य तौर से। तो आज हम आपको लिए चलेंगे किसान भाइयों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड गौरियाकर्मा हजारीबाग में स्थित है। और आज जो हमारे साथ बात करेंगे एक वैज्ञानिक है डॉक्टर नरेंद्र सिंह। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है।
1: जी नमस्कार, जोहार
0: डॉक्टर साहब। हम जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ फलदार वृक्ष जैसे कि आम अमरूद कटहर बढ़हर लीची बहुत तरह के फलदार वृक्ष यहाँ देखा जाता है, बैर है कनौदा है, मतलब कहा जाए कि राय तरह से झारखंड में हर तरह का फलदार वृक्ष लगभग सुटेबल भी है। लेकिन आज जिसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे जो मार्केट में अमरूद जो देखते हैं आधा केजी बिकते हुए है ना, तो उस अमरूद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अमरूद जो होगा उसके लिए कैसा मिट्टी होना चाहिए, डॉक्टर साहब उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें।
1: जो झारखंड की जो जलवायु और जो यहाँ की मृदा परिस्थिति है वो लगभग हर प्रकार के फल जो फलदार पौधे हैं उनकी वृद्धि और उनके उत्पादन के लिए उपयुक्त है। और अमरूद जो है यहाँ की जो जलवायु और जो मिट्टी की जो स्थिति है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन जो इसमें हमारे जो इस क्षेत्र की जो जलवायु और मिट्टी है उसमें केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जो गोबर का पुराना खाद है वो पौधे का गड्ढा बनाते टाइम भी उसमें थोड़ा सा अच्छे से लगाया जाए और प्रति वर्ष कम से कम 8 से 10 किलो उसको दिया जाए। यदि गोबर की खाद भी यदि किसान समुचित तरीके से डालता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व की हो सकती है।
0: तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं 1 एकड़ में अमरूद का हम खेती करना चाहें यानी कि 100 डिसमिल में, तो उसमें कितना अमरूद का पौधा हमारा लगेगा और उसको हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ हवा का भी प्रकोप जो होता है पौधा अगर हम उल्टा तरीका से लगाए तो भी हमको नुकसान होता है, तो उससे हम कैसे बचेंगे और अच्छा मतलब पौधा हमारा कैसे लगेगा, और कुछ इसका प्रजाति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अमरूद।
1: तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रजाति के बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारे भारत की जो पुरानी जो किस्म है उसमें एक अलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 जिसको सरदार गुआवा भी कहते हैं, सरदार अमरूद, ये दोनों बहुत ही प्रचलित थे जो उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के कई स्थानों पर उनको पहले से किसानों द्वारा लगाया जाता था। लेकिन उसके बाद कई हमारे जो सरकारी संस्थान हैं उनके द्वारा कई उन्नत किस्में भी विकसित की गई जिसमें जो मुख्य जो लक्षण रहते हैं, एक तो उसका जो बीज है वो कम कठोरता वाला रहता है और जो उसका गुदा है उसका कलर लाल या गुलाबी रंग का होता है जिसको किसानों द्वारा और जो मार्केट में है अच्छा पसंद किया जाता है। तो इसके लिए जो मुख्य किस्में निकली हैं, एक अभी नई अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा एक पूसा आरुषि नाम से एक किस्म निकली है और एक पूसा प्रतीक्षा निकली है। इसके अलावा बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा अर्का किरण अर्का रश्मि मृदुला ये सारी किस्में विकसित की गई है। ये सारी जो किस्में हैं पूर्ववर्ती किस्मों के लगभग बराबर ही फल का साइज होता है। जो आप कह रहे हैं कि बड़ी साइज का जो अमरूद जो है बाजार में मिलता है वो जो थाई जो किस्म है जो बाहर से विकसित करके हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई उनका है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना दूरी रखें, कैसे उसका प्लांटिंग करना चाहिए। तो इस मामले में जो अमरूद की जितनी भी हमारे यहाँ पे किस्में उपलब्ध हैं उनके लिए करीब 3x6 मीटर 3 मीटर × 6 मीटर या फिर 3x5 मीटर ये दूरी बिल्कुल पर्याप्त है। इससे कम दूरी पे भी अमरूद को लगाया जा सकता है लेकिन कुछ समय 6 से 7 साल के बाद जब पौधा बड़ा होने लगता है तो एक दूसरे से में हो उलझना शुरू करता है जिससे उसके अंदर बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है और उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है किसान मित्रों के लिए कि 3x6 मीटर पे यदि पौधे को लगाया जाए और लगाने का जो सबसे उपयुक्त समय है बारिश का समय है और लगाने से करीब 1 महीना पहले किसान मित्र जो क्या करे 3x3 फीट का गड्ढा तैयार करे, उसको 8 से 10 दिन धूप में खुला छोड़े जिससे कि उसके अंदर के कीड़े जीवाणु जो दिया दीमक ये है ये सब मर जाए। उसके बाद उसमें करीब 10 से 15 किलो गोबर की खाद और आधा किलो डीएपी इसको मिक्स करके उसको गड्ढे को भर दें और जैसे ही बारिश हो उसके साथ उसको पौधे का रोपाई करें तो एक बहुत ही अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। और मेरा ये मानना है कि उससे 50% तक आगे आने वाले पौधे की जो समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा।
0: चाहते हैं अमरूद का लगाने का सही समय क्या होता है?
1: जी अमरूद का लगाने का सही समय जैसे मैंने बताया कि बारिश का समय रहता है क्योंकि पौधा लगने के तुरंत बाद जो 1 से 1.5 महीना तक हमारे यहाँ की जलवायु में एक तो वातावरण में आर्द्रता या नमी बहुत ज़्यादा रहती है और लगातार थोड़े थोड़े समय के बाद बारिश चलती रहती है तो उससे क्या पौधा अपना अच्छे से जड़ पकड़ लेता है। लेकिन यदि किसी किसान के पास समुचित व्यवस्था हो सिंचाई की तो फरवरी मार्च में भी लगाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी यह है कि जैसे गर्मी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो पौधे की जड़ों को स्ट्रेस के कारण शुरुआती अवस्था में वो झेल नहीं पाता है सहनशीलता उसकी कम।

0: रहती है। तो हमारी तरफ से सलाह यही रहेगा कि बारिश का सीजन जो है वो हमेशा उपयुक्त रहता है।
1: यानी कि 15 जून के बाद से किसान अगर लगाना चाहे तो अच्छा भी होगा,
0: जी
1: हमारे
0: बिल्कुल,
1: यहाँ खासकर झारखंड में।
0: जी बिल्कुल ठीक है।
1: अमरूद जब लगाने के बाद उसमें कितने दिनों बाद इसका पहला निकाई गुड़ाई किसान को करना चाहिए?
0: जी देखिए, अमरूद जैसे बाकी फलदार जो फसलें हैं उन्हीं की तरह ये बहुवर्षीय फसल है, तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्टिकुलर किसी सीजन में, लेकिन जनरली बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम घास वगैरह ज्यादा रहती है, और जो घास वगैरह जो नुकसान करती है, जो सबसे अधिक नुकसान करने वाली घास होती है जो पौधे के जड़ के आसपास निकलती है, तो किसान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम बारिश का समय में और फरवरी मार्च के टाइम पे वसंत ऋतु में उसके जो जड़ के आसपास का जो है क्षेत्र उसको साफ करके वहाँ पे थाला अच्छे से बनाया जाए, जिससे वहाँ जो पौधे को समुचित पानी भी मिले और समय समय पे घास जो है वहाँ से निकले। उसके अलावा मल्चिंग, जिसको हम पलवार कहते हैं, पुरानी सूखी घास पत्तियां, ये सब भी यदि जड़ों के पास में इकट्ठा की जाएगी तो जो खरपतवार है उसकी वृद्धि कम होगी और जो जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी अच्छा होगा।
1: अभी कहीं कहीं अमरुद में आप देख कर रहे हैं किसान मतलब डायरेक्ट प्लास्टिक का मल्च कर दे रहे हैं, ड्रिप लगा दे रहे हैं, क्या उसमें ज्यादा सुटेबल होगा?
0: जी, जो प्लास्टिक मल्च है वो उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हमारी जो सूखी पत्तों की ऑर्गेनिक पलवार काम करती है, लेकिन उसका जो थोड़ा जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है, और 3 साल 4 साल के बाद जब वो प्लास्टिक काम लायक नहीं रहता तो उसका निस्तारण भी एक कहीं कहीं समस्या रहती है। तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए, चूंकि यहाँ पे धान का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है, तो पुआल रहता है जिसका हम कहीं और जगह उपयोग नहीं कर पाए, खासकर धान का, उसको इसमें उपयोग किया जा सकता है, या फिर कोई सूखे पत्ते हैं तो उनका उपयोग इसमें किया जा सकता है।
1: अमरुद लगाने के बाद कितने दिनों बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है?
0: अमरूद में पहली बार जो फूल आपको देखने को मिलेंगे वो लगभग दूसरे साल से भी देखने में मिल सकता है, लेकिन तीसरे चौथे साल से किसान उसमें से उत्पादन ले सकता है। हमारी किसानों को सलाह रहती है कि कम से कम 3 साल तक उसमें से उत्पादन न लिया जाए, जिससे कि पौधे की जड़ें कमजोर न रहे। एक इसमें विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि अमरूद के पौधे का ये गुण होता है कि यदि उसको लगातार थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहेगा तो उसमें पूरे साल भर थोड़े थोड़े फूल आते रहेंगे, कुछ फल लगते रहेंगे, और यदि बारिश के टाइम पे यदि वही फल पकने को तैयार है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, जिसको हम फल मक्खी कहते हैं, लट का काम करती हो, तो ये समस्या बहुत मुख्य हो जाती है। तो इसीलिए किसानों को हम सलाह देते हैं कि 12 महीने लगातार थोड़े थोड़े फल आने से बेहतर है कि एक किसी पर्टिकुलर सीजन में अच्छा उत्पादन लिया जाए। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लिए जो सुटेबल है कि बारिश के समय में, जैसे बारिश शुरू होता है तो बारिश के समय में नेचुरली उस टाइम अच्छा खासा अपने यहाँ पे वर्षापात रहता है, जल के संसाधन है, तो बारिश के टाइम पे यदि उसमें फूल आएंगे तो करीब 120-130 दिन के बाद वो पकता है। तो सर्दी के टाइम पे जो अमरूद पकता है उसमें फल मक्खी का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम रहेगा, और उसमें जो किसानों को फल की साइज भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि पूरी जो ग्रोथ है फल की उस दौरान पौधे को समुचित पानी और जो पोषक तत्व है वो मिलते हैं। तो इसी के लिए, इसके लिए दो ही रिकमेंडेशन रहता है हमारा कि मई और अप्रैल 15 तारीख से मई तक उसका पानी बिल्कुल रोक दिया जाए पौधे के पत्ते पीले होने तक, और मई लास्ट में जून 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में उसको खाद दे के छोड़ दिया जाए, जैसे ही बारिश होगी उसमें नए फूल आना शुरू होंगे।
1: देखिए अमरूद में सबसे बड़ी चीज होता है कि प्रूनिंग जो बोलता है, डाली कटिंग, वो कब किसान को करना चाहिए?
0: प्रूनिंग के बारे में ऐसा है कि अमरूद का एक गुण है कि इसमें जो फूल आता है वो जो नई जो डाली निकलती है, जो नई कोंपल निकलती है उसमें आता है, तो हर साल एक जो इसकी मुख्य डाली होती है वो अपना आगे की तरफ शीर्ष की तरफ प्रगति करती जाती है, और जो साइड से छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकलती है वो लगभग सूखती जाती है। तो जो सीधा आगे जो ब्रांच बढ़ रही होती है मेन ब्रांच, उसको कंट्रोल करना जरूरी रहता है। कभी 25% 20% हम रिकमेंड करते हैं कि इसको बसंत ऋतु में उसको काटा जाए, जिससे कि उसकी जो नई ग्रोथ है अगली बारिश के सीजन में आ जाए।
1: अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हम जब हमारे जब उत्पादन होता है उसको हम कैसे पैकिंग करेंगे ताकि हमारा बाजार में अच्छा भाव।
0: अमरूद का कई जगह किसान कई बार क्या करते हैं कि एकदम पूरा पीला पड़ जाता है फल पौधे के ऊपर, तभी वो उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन अमरूद में ये है कि जैसे ही आपका गहरे हरे से एक फीका हरा रंग जैसे परिवर्तित होने लग जाता है और इसका भरपूर साइज ले लेता है, उस टाइम यदि किसान अमरूद को हार्वेस्ट करके और क्रेट में पैक कर लेगा तो मार्केट तक जाते जाते वो समुचित रूप से पीला रंग ले लेगा, तो उसको कुछ अच्छे से निस्तारण किया जा सकता है। उसके अलावा यदि 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि उसका भंडारण किया जाए तो अधिक समय तक उसका भंडारण किया जाए।
1: युवा साथी को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से, जैसे जो अभी बेरोजगार हैं, वो फलदार वृक्ष में कैसे आए और कैसे आए यहाँ से जुड़े?
0: पूर्वी भारत की जो जलवायु और मैं कहूंगा कि जो भौगोलिक जो स्थिति है वो पठारी क्षेत्र है,

0: तो जहाँ पे जल के जो संसाधन है वो बहुत ही कम है, जो इरिगेशन सिंचाई के संसाधन, क्योंकि बारिश का सीजन में मुख्यतः बारिश होता है, तो इसके लिए बहुवर्षीय फसलों जैसे अमरूद की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि अमरूद न केवल फ्रेश मार्केट में जाता है, यदि इसका प्रोसेसिंग सेक्टर को कैच किया जाए तो ये एक युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा नया सपना साकार करने के लिए अच्छा रास्ता हो सकता है। क्योंकि अमरूद का आपने देखा होगा जेली आता है मार्केट में, वो बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम जेली बनता है। इसके अलावा भी अमरूद के कई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जो अमरूद का जेली इवन अमरूद का जूस भी आजकल डिब्बा बंद आता है मार्केट में, यदि इस सेक्टर को भी टैप किया जाए तो न केवल हमारा जो लोकल मार्केट है प्रोसेसिंग मार्केट को भी अच्छे से पकड़ा जाए।
1: तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो देखला कि ये हलथिन डॉक्टर नरेंद्र सिंह आर जे की बतलथिन कि फलदार वृक्ष में अमरूद के उन्नत खेती कैसे करल जाए,
3: हाँ,
2: और इनकर से बातचीत करल थी वीरेंद्र साहू।
3: तो देखा कि फलदार खास करके अमरूद के खेती के बारे में विशेष तौर तरीका से अच्छा जानकारी देलथिन हैं, और अब देखा यही जानकारी के साथ अब हम इन सुने आज के बाजार भाव और मौसम के जानकारी के बारे में थोड़ा चर्चा हम इन करो ये। तो देखा कि बाजार जो हमारे खास करके जहाँ चर्चा कर लो वो हजारीबाग मंडी सब्जी के आधार से हम बतावे थियो। लाल आलू 15 से 20 रुपया प्रति किलो, सफ़ेद आलू 14 से 15 रुपये किलो, प्याज 15 से 20 रुपया किलो, फूलगोभी 30 से 40 रुपया किलो, पत्ता गोभी 20 से 25 रुपया किलो, पटल 20 से 25 रुपया से 30 रुपया प्रति किलो, भिंडी 10 से 12 रुपया प्रति किलो, नेनुआ 15 से 20 रुपया प्रति किलो।
2: और वहीं पे कद्दू है 10 से 15 रुपए किलो, हरा मिर्चाए 60 से 70 रुपए किलो, शिमला मिर्चाए 60 से 70 रुपए किलो, गाजर 20 से 25 रुपए किलो, और बीट जो है 20 से 25 रुपए किलो, सेम जो है 60 से 70 रुपए किलो, फरस बीन जो है 50 से 60 रुपए किलो,
3: और मूली देखा 20 से 25 रुपया प्रति किलो, धनिया पत्ता 60 से 70 रुपया प्रति किलो, अदरक 100 से 120 रुपया प्रति किलो, खीरा 15 से 20 रुपया प्रति किलो।
2: और वहीं पे टमाटर जो है 15 से 20 रुपए किलो, लाल साग और पालक साग 15 से 20 रुपए किलो। और आज के मौसम के जानकारी बता दे ही है, अधिकतम तापमान रहले 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहले 23 डिग्री सेल्सियस, और आज के आर्द्रता रहले 59%, और कल के जो मौसम के रहे का आशा है ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस।
3: तो देखा कि आज के बाजार भाव और मौसम के इस प्रकार जानकारी रहले आज के, और अब हम इन चर्चा करिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में।
2: और ये योजना देखला कि बहुत ही बेस योजना है कि जे भी छोट और सीमांत किसान जे रहो है तो उनकर लेल ये एक पेंशन योजना है, जेकर में है कि कुछ पैसा जमा करल पारो है और बाद में जाके वो किसान के है कि एक आर्थिक सहायता के रूप में दियल जाए।
3: हाँ। तो ये चीज़ तो सही बात तो बतेला है, जैसे कि ओकर में कुछ पैसा कटू हन किसान के खाता से, है ना, और एक प्रकार के कटू हन तो बुढ़ापा में उनका एक पेंशन के रूप में भी मिलू हन, एक फायदा भी हुआ है।
2: मतलब एक में कहे कि 60 वर्ष के आयु तक जो है कि पूरा होए के बाद किसान के हर महीना 3,000 तक के जो है कम से कम राशि पेंशन के रूप में दियल जाता है।
3: हाँ। और देखा कि अब यही सब जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से जाए के भी बेरा हो गए हैं,
2: तो हमारा नाहमता के कार्यक्रम किसान वाणी से
3: और वीरेंद्र के अनुमति
2: देते हैं।
3: जोहार, जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी के ग्रामीण भाई बहन सबके कार्यक्रम में स्वागत है और साथ है नाम देने से प्रणाम जोहार और हमारे साथ एक बार फिर से हथिन वीरेंद्र भाई तो तोहरो जोहार
1: जोहार नहमता बहन और कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में जोहार नमस्कार हन और देखा कि हम हर बार के हर समय के आधार पर कार्यक्रम में बहुत कुछ लेकर आबू है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करबे बदलते मौसम में पशुओं के उचित देखभाल और बाद जरूरी संदेश और बाद देखा एगो गीत नाथ मनोरंजन के लिए
0: और एगो महिला किसान हथिन उनकर जे है खेती बाड़ी के जे अनुभव करे के तरीका है वो उनकर जुबानी हम सुने पे और साथ में है जे अभी के कृषि चर्चा है समसामयिक कृषि चर्चा उकर पर बात कर
1: हाँ, तो देखा कि हम इन तो सब तो चर्चा में बनल रहे हैं लेकिन आज सबसे पहले हम इन बात करो ये बदलते मौसम में पशुओं की उचित देखभाल के बारे में। तो देखा ये मौसम जो अब अप डाउन अभी हो तो जेकर चलते पशु में बीमारी अभी बहुत जोर से जैसे छीक छाक पतला दस्त होना ये बहुत आम चीज है अनपच होना जानवर में। तो सबसे पहले हमें एक चीज के हमेशा ध्यान दिया चाहिए कि अभी जे हो यानी कि 2-4 दिन बाद वैक्सीन एक जब पड़ो हो 10 तारीख के बाद से वो किसान के एकदम वैक्सीन मतलब 10 तारीख का वैक्सीन तो दिया ये लगल हो तो आदमी के दियावे के चाहिए जरूर। और देखा कि अगर जो जानवर के जोंक के दवाई अगर तू देले और 4-5 महीना हो गलो तो पुनः ओकरा जोंक के दवाई एक बार फिर से रिपीट कर दा काहे कि घास में कुछ ऐसा ऐसा वायरस हो है जेकर चलते एक तो क्रीमिक तो पेट में मारबे कर तो लेकिन घास के माध्यम से जे भी पेट में वायरस है तो ओकरो भी मारो है ओकर से जानवर स्वच्छ और सुरक्षित रहो है। और एक बात और बता दें कि वैक्सीन हमेशा आदमी के करावे के चाहिए ताकि अपन पशु तुहर ठीक रहो तो अगर बीमार भी हो तो कोई भी दवा से जल्दी वो ठीक हो जाए।
0: एकदम बहुत बेस बात बतैला कि समय समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी हो जाए है पशु सबके और ओकर साथ साथ कुछ जे हमें जरूरी काम कर सको ही है जैसे कि साफ सफाई के काम कि वह हमेशा गुहाल के हमें साफ सुथरा रख सको ही है और दिन में भी जहां बांधो ही अपन पशु के वहां भी साफ सुथरा रखे के चाहिए गंदगी नहीं हो के चाहिए और पानी और जे भोजन हमें दे ही है अपन जानवर के ओकरा कोशिश करिए कि हमें ताजा दिए मतलब बासी चारा भी नहीं दिए के है आना तो पानी हम इनके जो दिए है वो ताजा पानी हम इन दिए तो ज्यादा बढ़िया है पशु के लिए और साफ सफाई में तो देख ला गुहाल के साफ सफाई के साथ साथ है पशु के नहलाए के भी हाँ। पशु को नहलाए के चाहिए ओकर खुर के हमेशा डिटॉल पानी से जरूर साफ करे के हाँ। चाहिए काहे कि जे खुर में अगर घाव हो जाए तो वो बहुत दिक्कत हो जाए खुरपका रोग ओकरे से फैल जाए है तो खुर के साफ सफाई भी बहुत जरूरी है।
1: साफ ये बहुत अच्छा बात बताया कारण हुए कहने की गंदा जगह में रहे जैसे की पेशाब बार बार वहां पड़े लोग गोबर पैर में पड़े लोग तो उस जगह का हुए की भींगल रह जाए अब भींगल रह जाए जीवाणु के प्रकोप ज्यादा हो तो जीवाणु और वायरस के प्रकोप मारे खातिर ले है डिटॉल से सप्ताह में एक बार जरूर पैर में ओकरा धोवे के चाहिए डिटॉल या फिनाइल जे भी पानी उपलब्ध ओकरा हो जाए तो ओकरा से धोवे से ई का होवे कि खुरपका या जे बीमारी हुए पैर में जख्म होवे की शिकायत उ शिकायत ना मिलते
0: एकदम। और कार्यक्रम में हमें आगो भी बनल रहबे अब धर सुनाओ ये जरूरी संदेश और साथ में एगो गीत
1: तो सुनल जाए
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी।

0: तो देखा, अभी हमने सुन लिया कितना बढ़िया एक प्यारा सा गीत है ना, धरती अंबर नींद से जागे करके बोले ले, और बहुत ही अच्छा गाना मनोरंजन के साथ सुन लिया। अब हम इन बढ़ो या आगे जानकारी के तरफ।
1: एकदम जानकारी हमें तो पहले कहले ही है सुने बे, और कितना बढ़िया ये जानकारी चे है कि जे हम मतलब गेले लिए और एगो महिला किसान से मिले लिए और बहुत बढ़िया से खेती करवाते ना। और आज के समय में हमें तो जानो ही है कि पुरुष और महिला जे है बराबर भागीदार है कृषि के काम में, और सब बहुत ही बढ़िया से काम करो हथिन, खेती बाड़ी करो हथिन। तो ऐसने एगो महिला से मिले लिए पुतुल देवी, जे कि मतलब मरचाय के खेती कर ले हलथिन भाई, तो उनकर से बातचीत कर लिए हैं। तो
0: देखा, सबसे बड़ा चीज़ कि महिला के इतना अच्छा ही खेती बाड़ी करलथिन, और इनखर से एक मतलब जानकारी लेलथिन नहमता परवीन, और ये जानकारी भरल बात के हम सुनो या और समझो या।
2: किसान भाइयों, हम हैं कंचनपुर गांव में और हमारे साथ है एक महिला किसान पुतुल देवी जी। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: और आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो हरा मिर्च के खेती की हुए है और इनका मिर्च जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारा मिर्च फला हुआ भी है और अच्छा किस्म का है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप जो मिर्च का गाछी करते हैं या करवाते हैं वो कहाँ पे करवाते हैं?
3: पॉली हाउस में।
2: अच्छा, पॉली हाउस में।
3: हाँ, दाना,
2: तो आप अपना बीज देते हैं?
3: हाँ,
2: है ना।
3: हाँ।
2: तो कितना समय में आपको गाछी मिल जाता है?
3: 20 दिन
2: में मिल जाता।
3: हाँ,
2: है
3: 20 दिन में मिल।
2: तो आप इसे जब खेत में लगाते हैं तो लगाने समय मतलब गाछी का कितना बड़ा होता है अंदाज से?
3: इतना बड़ा, एक उंगली इतना
2: होता है ना।
3: हाँ।
2: तो सबसे पहले आप ये बताइए कि खेत की तैयारी मतलब हमारा जो मिर्च का खेती है वो अच्छा से हो, बढ़िया हो, उसके लिए खेत की तैयारी पहले कैसे करते हैं?
3: पहले गाड़ी से जोता दे, दो चार रोज छोड़ दे तावे ले, ओकर बाद में झोरा चीर के, ओकर बाद फिर जोता के, फिर देखिए झोरा चीर के, ओकर बाद फिर
2: गोबर ये सब मिलाते हैं?
3: हाँ, गोबर उबर सब मिला के रोप देना।
2: अच्छा,
3: तो पानी पटाओ।
2: झोरा कितना दूरी पर बनाते हैं?
3: एक बीता, एक डेढ़ बीता पर।
2: एक डेढ़ बीता पर झोरा बनाते हैं ना। और पौधा जो लगाते हैं वो कितना कितना दूरी पर?
3: दो बीता पर।
2: दो बीता पर लगाते हैं। और लगाते हैं कौन समय में, दिन में या शाम को लगाते हैं?
3: शाम के चाहे सुबह भी, दो टाइम जाना जखनी भी लगा।
2: अच्छा, तो लगाने का क्या है उसमें? लगाने के बाद तुरंत पानी दिए और लगाने के समय कोई खाद वगैरह कुछ देते हैं क्या?
3: नहीं, सल्फेट, डीएपी, सल्फेट।
2: अच्छा,
3: कुछ नहीं
2: मतलब वो लगा के रोप दिए। और पानी फिर कब कब देते हैं?
3: तो अब जखनी सूखेगा जखनी रोप देना है, ओकर बाद फिर पानी पटा देना।
2: अच्छा,
3: ओकर बाद फिर सूखता तकर बाद फिर पटाना।
2: अच्छा, मतलब जब देख रहे हैं कि उसमें नमी खत्म हो गया। हाँ, तो फिर से पानी दे देना है ना। अच्छा, मिर्च का सबसे अच्छा कीमत तभी मिलता है जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तीखा होता है।
3: हाँ, तीखा।
2: लोग तो इसीलिए खरीदते हैं ना, खरीदने समय हम लोग भी पूछते हैं कि तीखा है कि नहीं।
3: हाँ।
2: तो तीखा होता है तभी मिर्च का अच्छा कीमत मिलता है। तो तीखा बढ़िया हो इसके लिए फिर क्या करते हैं? अच्छा, ये तीखा है। तो जैसे होता है ना कि पानी का कमी हो गया या पानी बहुत ज्यादा भी पड़ जाता है तो मिर्चा खराब हो जाता है, तो किस
3: बरसात में? बरसात में खराब हो, अभी तो नहीं खराब।
2: अभी नहीं होता है ना, मतलब अभी का मिर्च तीखा हो मिलता।
3: हाँ,
2: है
3: बरसात में जैसे पानी मारा ना ज्यादा तब गले उले के थे।
2: अच्छा,
3: ऐसे में।
2: अच्छा, इसमें है कि एक ही बीमारी ज्यादा आता है जिसमें कि पत्ता मुड़ जाता है पूरा, जैसे भंगवाना जो बोलते हैं।
3: हाँ, तो दवा दे।
2: अच्छा, दवा देते हैं,
3: भंगवाला दवा भी।
2: अच्छा, तो मतलब वैसा है कि पत्ता जो इसमें मुड़ जाता है, भंगवाता है, तो उस समय दवा देते हैं, है ना।
3: हाँ।
2: अच्छा, जैसे मिर्च का पौधा लगाए तो कितना समय में, आप जो किस्म लगाए हैं तो कितना समय लगता है इस फल देने?

0: अच्छी बात है। और इसमें क्या कुछ ध्यान देने वाली बात?
1: आगे का तो कुछ भी ध्यान ना।
0: अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बस समय समय
1: ना
0: पे दवा देना है,
1: हाँ, दो
0: पानी
1: बजे चल
0: देना है।
1: रहा है, 2 बजे चलने पानी दे दलिए, पानी पटा दलिए।
0: अच्छा, 2 बार आप चालने का बात कहे तो एक बार जैसे आप लगाए
1: हाँ घास
0: उसके
1: लगा,
0: बाद, हाँ, कितना दिन बाद फिर उसमें कोड़न देते हैं?
1: कोड़न 15 दिन के बाद में कोड़न दे,
0: अच्छा,
1: ओकर बाद फिर झोरा चीर दे, ओकर बाद फिर घास जन्म तो ओकर बाद फिर चल रहा, फिर बाहर जाता तो फिर कोड़ी चलाए लग नहीं।
0: अच्छा, मतलब कि एक बार लगाया फिर उसके 2 बार कोड़न देते हैं ना कुछ
1: हाँ
0: कुछ दिन में। घास तो निकालना जरूरी रहता
1: जरूरी
0: है,
1: है
0: तो घास नहीं निकालने के लिए वही बस कोड़न ही करते हैं और
1: हाँ
0: घास
1: कोड़ा
0: चुन देते हैं ना।
1: हाँ हाँ
0: और इसके अलावा भी कुछ लगाए हुए क्या?
1: अभी बिलोटी टमाटर है, टमाटर बिलोटर है तो
0: अच्छा, टमाटर भी लगाया ना,
1: हाँ
0: और
1: परवल भिंडी है, खीरा हो रहा है
0: अच्छा, मतलब ये कि खीरा, नेनुआ, टमाटर, हरा मिर्च सब लगा हुआ है।
1: हाँ।
0: और यहाँ पे क्या लगाए हुए
1: ये
0: ये?
1: धनिया लगाए ये
0: अच्छा,
1: वाला धनिया, वो फर्क भी नहीं
0: ओ, यहाँ पे मतलब धनिया
1: नहीं
0: अभी इसमें पानी नहीं दिए ना?
1: अभी 1-2 रोज हुआ है और पता है ना लाइन ना ले, इसीलिए
0: अच्छा, मतलब यहाँ पे भी निकला नहीं है किसान भाइयों इनका, ये यहाँ पे धनिया लगाई हुई है, फरसबीन है, मतलब एक तरह से इनका मिश्रित खेती है, सभी
1: हाँ
0: चीज तो लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा से खेती कर रहे
1: फूल
0: हैं।
1: गोभी है, बंद गोभी है, सब चीज है।
0: अच्छा, फूल गोभी भी लगाए हुए है, पत्ता गोभी भी लगाए हुए है कुछ चीज, तो मतलब इस तरह से सभी थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, तो क्या आपको मतलब इससे लगता है फायदा की सब चीज?
1: हाँ फायदा कैसे ना,
0: हाँ
1: फायदा नहीं होगा तो कहीं लगाएंगे कहीं है
0: मतलब एक होता है ना कि सभी एक ही, बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही चीज पूरा लगा दिए।
1: नहीं, अब थोड़ा हमारे बारे है तो थोड़ा थोड़ा सब चीज नहीं लगाना
0: हाँ, थोड़ा थोड़ा सब चीज होना चाहिए। तो चलिए पुतुल जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और भी महिला किसान ऐसे भी तो अभी के समय में जितने पुरुष जो है किसान वो काम करती ही है खेत में, साथ में महिला भी काम करती है,
1: हाँ।
0: और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और भी किसान सुनेंगे और आपके अनुभव से उन्हें भी अच्छा लगेगा, जानकारी मिलेगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: तो देखा कि पुतुल देवी बहुत अच्छा जानकारी देती हैं हरा मिर्च के खेती के बारे में, और इनकर से बात करती हैं नमता प्रवीण, तो बहुत ही अच्छा जानकारी लेके बात करती हैं। और अब हम इन चर्चा करिए समसामयिक कृषि चर्चा, यानी कि अभी हमके का करे चाहिए अभी के समय में खेत बारी में, ओकर बारे में हम चर्चा करबे।
3: तो सबसे पहले तो जो समय है वो है खेत के गहरा जुताई करे के,
2: हाँ
3: काहे कि यही समय जो रहो है कि मतलब एकदम तावल रहो है, तो खेत के एकदम गहरा जुताई करके और ओकरा छोड़ दिए के चाहिए, ताकि कीड़ा मकोड़ा जितना भी नुकसान पहुंचाए वाला कीट हो है और साथ में जो खर पतवार हो है वो सब मर जाए।
2: तो देखा, गहरा जुताई में 2-3 बात के हमेशा ध्यान दिया चाहिए। सबसे पहले कि हम खेत के अभी के समय कुछ मेड़बंदी भी कर सको ही है, जैसे जहाँ चूहा लग गए हैं ओकरा बढ़िया से कोड़ाई करके ढंग से ओकरा मेड़बंदी कर दिए, पहला काम। दूसरा में है जैसे जो हम इन खाद के प्रयोग करियो गोबर के, जैविक गोबर के, तो ओकरा हम इनके सबसे पहले कि खेत के गहरी जुताई के साथ जब गोबर हम छिड़काव करते हैं, ना कि एक जगह रह दिया या फेंक के छोड़ दिया, ना ओकरा छिड़काव करके पुनः रोटर से जोत के ओकरा छोड़ दिए के चाहिए। तो ओकर से कहा हुआ है कि सबसे पहला कि गोबर जो हो छिड़काव के 4-5 दिन बाद जब सूख जाए और ओकरा जोताई कर दो, धीरे धीरे जमीन में वो मिल जाए गल के सड़ के, चूँकि 1-1.5 महीना पहले गोबर डाले से सबसे पहला फायदा हुआ, जितना सड़तो गोबर उतना ओकर से उत्पादन क्षमता बढ़तो भी। और दूसरी चीज, खेत के जोताई करे से 3 फायदा हुए, सबसे खास शत्रु कीट के मतलब विनाश हुआ है पहला, दूसरा में घास करके मोथा घास या सावा घास जो सब हुए ओकर बीज जो है धीरे धीरे सब वहाँ सूख के गल जाए खत्म हो जाए, तो जोताई करना बहुत जरूरी चीज़ है। तीसरा में है कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति अपने आप स्वतः जोताई से बढ़ो है, जेकर चलते अगर तू टाइमिंग से अगर जोताई कर दिया गर्मी के समय में तो जितना भी उत्पादन ओकर से 15 से 20% अधिक उत्पादन हो तू अगर जुताई करो तब, और अगर तू तुरंत करो तो कर थोड़ा सा उत्पादन कम हो, क्योंकि जितना धूप में मट्टी सिजतो उलट फेर हो तो उतना अच्छा उत्पादन हो। तो कहे कि कभी कभी खेत में तू जाए तो जहाँ खेत के पानी बहल रहा है का मट्टी तू भर दे, वो जगह हर साल तू धान देखवा कि ज्यादा बड़ा बढ़ जाए या कोई भी चीज लगे वहां ज्यादा बढ़ जाए, तो ओकर कारण है कि वो जगह के चारों तरफ से धूप पड़ ले, धूप के चलते कोई शत्रु कीट ले वो भी खत्म हो, वहां

0: घास वगैरह सब खत्म हो गया, जो भी खाद दिले तो पूर्ण रूपेण पौधा में वो काम करे, इसलिए ज्यादा विकास हुआ है वहाँ
1: एकदम। और एक साथे साथे जरूरी है कि अब धर जे साग सब्जी जे अनाज लगल हम इनके खेत में ओकर पूरा देख रेख करे के, काहे कि जैसे समय को उतार चढ़ाव हो, कभी बादल हो जाए, कभी पानी पड़ जाए अचानक से, कभी धूप निकल जाए, तो इधर से हो है कि थोड़ा सा रोग व्याधि भी लगे के डर रहो है पौधा में। तो हम इनके है कि जैविक कीटनाशी के छिड़काव करते रहे के चाहिए। एक से का है कि कोई तरह के नुकसान नहीं होते, लेकिन का है कि जे है रोग लगे से बचते, कीड़ा लगे से बचाव हो सको है।
0: हाँ।
1: तो इस चीज हम इन कर सको ही है। और एक साथे है कि जे भी साग सब्जी जो फसल लगल है, अनाज लगल है, ओकर में सिंचाई करे के बहुत ध्यान दिए के।
0: हाँ।
1: काहे कि अचानक से जब गर्मी कर दे है, बारिश नहीं हो, बारिश तो कभी कदार हो, लेकिन जब नए है तो उस समय हम इनके ध्यान दिए के कि भाई पौधा जो है फसल हम इनके वो खराब नहीं हो, तो ओकर में हम इनके सिंचाई के व्यवस्था रखे के है। और जैसन की है ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल विधि, सब जितना भी तरीका है हम इन अपना सको ही है। अगर घर के बागान में हम इन लगाओ ही है साग सब्जी, तो घर के इस्तेमाल होए वाला जितना भी पानी है, जैसे कि बर्तन धोवल, कपड़ा धोवल, ये सब जो पानी है, ये हम इन सीधिया सके ही है अपन बारी में, ताकि वो पानी ओकर में मिलते रहे।
0: ये बहुत अच्छा तो बात बतेल है कि पानी की हम सुरक्षा कैसे करबे अपन और कैसे अधिक उत्पादन में ओकर बारे में भी चर्चा कर ला है। लेकिन एक और हम इन चर्चा करी, जैसे कि अभी मान ला हम इन धान वगैरह का बिहन करबे या बिलौती को भी गाछी करबे, तो ओकर भी अभी हम इन तैयारी करके अपन बढ़िया उत्पादन ले सको। जैसे कि फूल गोभी जहाँ के गाछी करे के या बिलौती गाछी करे के बरसाती सब्जी के, तो ओकरा सबसे पहले वहाँ बढ़िया से जोताई करके उस जगह के घास के कोशिश करी जितना कम से कम जनरेशन हो, यानी घास के कम जनरेशन करे खातिर का करना हो कि हर चार दिन में जहां तू अगर नर्सरी करबा तो जगह बोरा ढापता है ना, बोरा और प्लास्टिक ढापता तो का हो तो जो भी घास हो तो के दाना तो अंकुरित हो तो और अगर चार दिन बाद कोड़वा तो आंख मर जितो। इतनी तीन चार बार प्रक्रिया तू अगर करो तो एक से कहा तो घास के धीरे धीरे खत्म हो जितो, और जब घास खत्म हो तो जी भी नर्सरी करवा वो बढ़िया हो तो
1: एकदम सही कहला कि हम इनके जो भी है कि जब खेती करे के या नर्सरी करे के है कोई चीज़ के, तो हम इनके सब चीज़ पर बात पर ध्यान दिए के हैं। और इस सब के साथ साथ है कि जो फसल लगल है सिंचाई पर तो हम इन बात करबे कर लेंगे।
0: हाँ।
1: कि भाई सिंचाई समय समय पर करे के है, और खरपतवार भी समय समय पर जरूर निकाले के
0: कि कीट प्रबंधन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के जो मौसम हो अचानक बादल कर दो, अचानक एकदम गर्मी हो जाओ, एक से कीड़ा के प्रकोप ज्यादा हुए, तो एक में कीड़ा के प्रकोप से बचे खातिर किसान के का करे चाहे खेत में नमी हमेशा बरकरार रहना चाहिए पहला। दूसरा में अगर हम खेत में अगर दवाई दे सुबह के टाइम में 5 बजे भोर से 8-9 बजे तक दवाई दिए, ताकि ओकर बाद धूप में ओकर नहीं दिया, फिर शाम में अगर दवाई दे 4 बजे के बाद ही किसान के दवाई 6 बजे तक 4 से 6 बजे के बीच में छिड़काव हो, या ना कि बहुत ऐसा किसान है रात के भी छिड़काव कर दे, रात के छिड़काव करे कुछ नुकसान हुआ, जैसे कि कुछ हम इनके फायदेमंद जो कीट हुए वो रात में बैठो है जिससे मधुमक्खी परागण करो तो उससे ज्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ो, तो उस तरह से रात में छींटे से मधुमक्खी वगैरह या बहुत चीज पर असर पड़ जाए, तो शाम में गर्मी के समय में 4 से 6 बजे और ठंडा के समय में 5 बजे से 8 बजे अथी यानी कि सुबह के टाइम में गर्मी में 5 से 8 बजे के टाइम में दवा के छिड़काव किसान के करे के चाहिए।
1: तब देखला कि बातचीत करत करत हम इनके समय भी भे गए है जाए के।
0: हाँ।
1: तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमरा नहमता के
0: अभिनंदन के अनुमति दा जोहार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 107।
2: मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पिनी हातरकी सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में श्रोता इस पल संध्या के 6:02 हुए हैं। लीजिए पेश है श्रमिकों को संबोधित कार्यक्रम मेहनत काश।

कार्यक्रम मेहनतकश सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी रेडियो की वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार जोहार। कहिए श्रमिक बंधुओं, कैसे हैं आप सब भाई? देखिए, एक बार फिर श्रमिक भाई बहनों हाजिर हैं इस पल आपके एफएम सच पर लेकर उसी कार्यक्रम को जो कहती है आपके श्रम और मेहनत की कहानी और दिखाती है एक रोशन राह सुखद समृद्ध और खुशहाल जिंदगी की। तो साथियों तैयार हो जाइए और चलिए हम अपने इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है उससे आपको रूबरू करा दे। तो साथियों अपनी आज की कड़ी में हम आपसे साझा करेंगे आपके हुनर को तराशने और उसे अपने रोजगार का आधार बनाने के संदर्भ में ढेरों बातें। इसलिए बने रहिए पूरे आधे घंटे हमारे संग क्योंकि आज के मेहमान भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोजगार के ऐसे ही कुछ नए साधन जिसके लिए हमने बहुत तैयारी कर रखी है। तो पल भर का इंतजार, मिलते हैं हम आपसे, लेकिन फिलहाल आपके इस खुशनुमा

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये बहुत ही प्यारा सा गाना रेडियो सेट पर, और इस गाने के लिए हम आपको लिए चले थे उस दिशा में जहां कुछ बातें थी आंखों आंखों की बातों की। तो इस दिलकश गीत के धुन को गुनगुनाते चलिए साथियों, हम आपको लिए चले उस दिशा में जहां कुछ बातें सोचने की, समझने की और अपनी जिंदगी में अपनाने की। श्रमिक भाई बहनों, प्रतिभा किसी भी मंच की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर प्रतिभा छुपी है और आप उसे तराश कर अपने लिए उसको रोजगार का साधन बनाना चाहते हैं, तो आज आधुनिक युग में ये संभव है, क्योंकि आधुनिक युग यही है कि हर कोई अपनी प्रतिभा को निखारे, जिस क्षेत्र में उसकी महारत है उसमें और भी अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा अपने को निखार कर उभारे, ताकि रोजगार खुद आप तक पहुंचे। तभी तो हमारी सरकार कौशल विकास कर लाखों युवाओं और युवतियों को श्रमिक बंधुओं इन दिनों रोजगार से जोड़ने में सफल हुई है, और साथ ही आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए कौशल विकास संबंधी कई लाभकारी योजनाएं भी चला रही है। अब बता दें आपको, चलिए एक एक करके, कि सरकार इन दिनों हमारे युवक युवतियों के कौशल विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे PMKVY भी कहते हैं, ये सबसे अच्छी योजना है, जिसके तहत श्रमिक बंधुओं आज हजारों हमारे युवक युवतियां हैं गांव के, शहर के, जो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने को रोजगार से जोड़ पाए हैं। दूसरी एक योजना है सरकार की PM सेतु, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना। तीसरी एक योजना का नाम है राज्य स्तरीय कौशल विकास योजना, और एक योजना इस दिशा में सरकार ने और भी लॉन्च की है, वो है प्रधानमंत्री पैकेज योजना। तो श्रमिक बंधु, हम बता दें एक एक कर कि किस तरह से आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और खुद को इसके लिए कटिबद्ध बना सकते हैं। तो साथियों, इन दिनों आधुनिक जमाने में आधुनिक उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में कुशल कामगारों की भारी मांग है। कितने तरह की इंडस्ट्रीज खुल गए हैं और इनमें एक कुशल कामगार की, मतलब एफिशिएंट लेबर्स की जरूरत होती है। तभी तो हमारी सरकार आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवक युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में मुफ्त अल्पकालिक प्रशिक्षण देती है और प्रमाण पत्र भी प्रदान करती है, जिसके जरिए आप चाहे तो स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो किसी संस्था में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी उद्योग धंधे के जरिए अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए श्रमिक भाई बंधु, सरकार ने अपने कौशल विकास केंद्र भी खोल रखे हैं कई जगहों पे, जहां युवकों को कंप्यूटर कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस और अकाउंटिंग की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये डिजिटल युग है, इसलिए हमारे युवक युवतियों को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने के लिए ये सब प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ताकि किसी भी जगह पर उन्हें नौकरी मिल जाए या अपने घर पे भी वो कंप्यूटर पे अपने लिए स्वरोजगार की शुरुआत कर सके। इसके अलावा श्रमिक बंधु, ऑटोमोबाइल मशीनरी, फिर इलेक्ट्रीशियंस के रूप में प्लम्बरिंग और AC रेफ्रिजरेटर से जुड़े भी कई कार्यों की प्रशिक्षण सरकार जो है अपने कौशल विकास केंद्र में देती है। जिसकी जैसी रुचि हो, जिस क्षेत्र में प्रतिभा हो, वो इस तरह का प्रशिक्षण मुफ्त में पाकर खुद को एफिशिएंट बना सकता है, कुछ खुद को दक्ष बना सकता है, रोजगार के लिए खुद को तैयार कर सकता है। युवतियों को इन जो कौशल विकास केंद्र हैं उनमें ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, नर्सिंग एवं टूरिज्म का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे हमारी महिलाएं भी, हमारी युवतियां भी आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बने। तो श्रमिक बंधु, आप भी अपने को कौशल युक्त बनाना चाहते हैं, खुद को निखारना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को सामने लाना चाहते हैं दुनिया के जमाने के, तो खुद को रोजगार से जोड़कर देखना चाहते हैं,
तो आइए आज ही सरकार की ये जो श्रम कौशल विकास योजना है इन सब का लाभ उठाएं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा mygovernment.blogs या श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नजदीकी प्रशिक्षण केंद्रों में आपको जाकर अपने आवेदन देना होगा। इसका आवेदन आप जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं और रोजगार मेले जैसे जॉब फेयर्स की जानकारी प्राप्त कर खुद को इन संस्थाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो श्रमिक बंधु, बस आपको एक बार दृढ़ संकल्प करके इस दिशा में आगे बढ़ना है। सरकार आपके हाथ थामने के लिए बिल्कुल तैयार है और आपको रोजगार प्रदान करने के लिए भी कटिबद्ध है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपके जहन तक जरूर पहुंची होगी। तो चलिए श्रमिक बंधुओं, हम आपको लिए चलते हैं फिर से एक प्यारे से गाने की ओर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और श्रमिक बंधु, इन संदेशों के बाद चलिए बारी है अपने आज के खास मेहमान से मिलने का। तो जैसा कि देखते हैं श्रमिक बंधु, कि इन दिनों हमारे दैनिक जीवन में एल्युमिनियम का उपयोग काफी बढ़ गया है। पहले केवल बर्तन ही उपयोग किए जाते थे अधिक से अधिक एल्युमिनियम के, लेकिन आजकल फैशन हो गया है एल्युमिनियम के दरवाजे बनाने का, एल्युमिनियम के खिड़की बनाने का, उनकी फ्रेमिंग करने का, और साथ ही साथ घर में जो बनते हैं बड़े बड़े दीवार पर अलमीरा, वो भी उनके बनते हैं एल्युमिनियम से। और भी कई ऐसे हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी चीज हैं जो एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम फैब्रिकेशन के द्वारा इन दिनों कई विविध तरीके के जो सामग्री हैं, उपयोगी सामग्री जिनका मार्केट में काफी डिमांड है, वो बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो हुनरमंद हैं इस क्षेत्र के, अपने हुनर को तराश कर रोजगार की शुरुआत कर चुके हैं, इन्हीं में से एक है मोहम्मद समी। तो चलिए श्रमिक बंधु, आज हमारे बीच है हमारे विशेष मेहमान मोहम्मद समी, जो बता रहे हैं किस तरह से एल्युमिनियम फैब्रिकेशन व्यवसाय संचालन से आप अपने को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, कई दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और अपने समाज परिवार को समृद्ध बना सकते हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद।
6: श्रोताओ, परिश्रम मानव जीवन की उन्नति का मुख्य साधन है। जो मनुष्य जितना अधिक परिश्रम करता है उसे जीवन में उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन या असंभव नहीं होता। परिश्रमी व्यक्ति जीवन में न सिर्फ खुद सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। आज के मेहनत कश कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक उद्यमी और परिश्रमी युवक से करा रहे हैं, जो अपने परिश्रम के बल पर न सिर्फ खुद का रोजगार खड़ा किया और आत्मनिर्भर बने, बल्कि कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन के व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद समी जी से। समी जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
7: नमस्कार।
6: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है?
7: हमारी शिक्षा हजारीबाग से हुई है, हम हजारीबाग के ही रहने वाले हैं और यहाँ के मिशन स्कूल से मेरी शुरुआती शिक्षा शुरू हुई और उसके बाद आनंदा कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और उसके बाद अपनी बिजनेस में हम लग गए।
6: समी जी, आम तौर पे देखा जाता है कि जो युवा होते हैं वो अपनी शिक्षा दीक्षा के दौरान या उसके बाद करियर को लेकर जहाँ तक बात आती है तो वो नौकरी, विशेषकर सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, तो आपने क्या इसके लिए ऐसा कोई प्रयास किया था?
7: पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरा रुझान नौकरी की तरफ नहीं रहा, मेरा रुझान बिजनेस की ही तरफ रहा, तो हमने सोचा क्यों ना बिजनेस की ही तरफ पूरा ध्यान लगाकर और उसको उसमें ही कामयाबी हासिल किया जाए।
6: क्योंकि समीर जी, जो नौकरी होती है या सरकारी नौकरी होती है वो सीमित होती है, मगर जो बिजनेस है, व्यापार, उसका दायरा तो असीमित है। तो बहुत अच्छा ख्याल आपका रहा, और आप इस एल्युमिनियम फैब्रिकेशन के व्यवसाय से जुड़े, तो इस व्यवसाय को करने के लिए आपने कहीं से अनुभव या कहीं से प्रशिक्षण वगैरह लिया था?
7: नहीं, इसमें प्रशिक्षण या अनुभव की जहाँ तक की बात है, तो हमारे कुछ दोस्त इस काम को कर रहे थे और दोस्तों की प्रेरणा से ही हम इस काम में आए और इस काम को हम आगे बढ़ाएं।
6: अच्छा, जहाँ तक इस काम को शुरू करने की बात है, तो कोई भी व्यवसाय या बिजनेस से जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले सवाल आता है पूंजी का, तो इसकी व्यवस्था आपने किस प्रकार की?
7: पूंजी तो उस समय मेरे पास नहीं था, शुरुआती दौर में पैसे की बहुत तंगी थी, तो उस टाइम भी अपने दोस्तों के पास, खासकर मेरे दोस्त हैं नौसाद, एजाज, इन लोगों के पास अपनी बात को रखे कि हमें एक बिजनेस करना है एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का, तो इसमें इस तरह का मतलब पूंजी की आवश्यकता, इतनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे दोस्त उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हो गए और उन लोगों ने भरपूर मदद किया। हाँ, बाद में फिर एक लोन अप्लाई हम किए थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एक लोन गवर्नमेंट दे रही थी, उस लोन को भी हम लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए।
6: तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने सरकार की प्रधानमंत्री ऋण योजना है उसका लाभ आपने उठाया। तो जो दूसरे युवा हैं जिनको पूंजी की आवश्यकता होती है, वो भी बैंक से लोन या इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं?
7: बिल्कुल, पूरे

0: प्लानिंग के साथ आप कोई भी लोन ले, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं, आप कोई भी लोन ले, लेकिन अपने बिजनेस को पहले समझ ले कि बिजनेस को किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आज कल हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा लोन ले लेते हैं बैंक से, लेकिन फिर बिजनेस को चला नहीं पाते हैं और लोन की रिकवरी पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो अपने बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो मेरे सलाह है युवाओं से कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो पूरी प्लानिंग के साथ करें और सरकार के योजनाओं का लाभ, पूरा लाभ उठाएं।
1: अब एक बार फिर हम आपके ये जो एल्युमिनियम फैब्रिकेशन के कार्य की बात है उस ओर आते हैं। तो ये कार्य आपने शुरू किया, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं?
0: अभी ये एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का जो रॉ मटेरियल है अभी टाटा से आ रहा है, क्योंकि टाटा में दो तीन फैक्ट्री है एल्युमिनियम रॉ मटेरियल की, तो अभी टाटा से ही परचेजिंग चल रही है।
1: और देखिए समीर जी, कोई भी व्यवसाय या उद्यम है तो उसकी मार्केटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो इस व्यवसाय में, इस कार्य में मार्केटिंग की क्या व्यवस्था आपने की?
0: मार्केटिंग लोकल स्तर पे जितने भी इस बिजनेस से जुड़े लोग हैं उन लोगों के साथ जाकर मिलना, और दुकान टू दुकान मतलब मिलना, मिलने जुलने से ये होता है कि बिजनेस का ग्रोथ बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया के जरिए भी बिजनेस को फैलाएं हम, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, गूगल मैप पे या फेसबुक पे, और ये सब में भी हम अपने बिजनेस का प्रमोशन किए, जिसके चलते हमको काफी लाभ मिला मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में।
1: यानी इस व्यवसाय के प्रचार प्रसार में आपने इंटरनेट मीडिया का भी सहयोग लिया?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट और मीडिया का सहयोग के बिना आज के डेट में कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको समय के साथ आपको बदलना पड़ता है। क्योंकि पहले मैनुअली सब कुछ होता था, लेकिन आजकल जब से सोशल मीडिया का दौर चल गया है तो कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसका सहारा, सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा।
1: बहुत अच्छी सोच आपकी है कि कोई भी काम आप करें तो समय के साथ उसमें बदलाव और उसमें सुधार करें।
0: जी।
1: समी जी, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं तो आप तो स्वयं आत्मनिर्भर बने ही, और कितने लोगों को आपके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है?
0: जी, ये एक सबसे मेरे लिए अचीवमेंट है कि मेरी एक सोच थी कि जब शुरुआती दौर में हम बिजनेस में आए थे तो हम भी कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में, किसी के अंडर में हम काम कर रहे थे। लेकिन जब हम अपने बिजनेस को एवन एल्युमिनियम एंड ग्लास के नाम से जब शुरुआत किए, तो मेरी एक सोच थी कि मेरे अंडर में भी 10-12 लोग कार्य करें और पूरे लगन और मेहनत से हमारे बिजनेस को वो उन लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाएं।
1: तो इतने लोगों को आपके माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो रहा है?
0: जी बिल्कुल, और हमारे जो जो सहयोगी हैं उनका पूरा सपोर्ट हमारे बिजनेस में है, और उन लोगों की मेहनत और काबिलियत की वजह से ही आज हमारी बिजनेस इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी है।
1: यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि कुछ जो नए जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, अगर वो इस व्यवसाय में आना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहेंगे, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे?
0: कोई अगर नए युवा इस रोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है कि इस कार्य में जो भी मटेरियल लगती है उस मटेरियल का परचेजिंग लो रेट में और अच्छी क्वालिटी की कहाँ से परचेजिंग हो पाएगी, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर फैब्रिकेशन लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक मार्केटिंग, सही मार्केटिंग की व्यवस्था करनी होगी कि किस तरीके से कस्टमर से बात किया जाए या उनको डील किया जाए और उनको एक बेस्ट प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की खिड़की या दरवाजे जो फैब्रिकेट होकर बनते हैं वो बनाकर दिया जाए, जिससे उनका बिजनेस और ग्रोथ कर सके।
1: तो समी जी, आपने एल्युमिनियम फैब्रिकेशन और इससे जुड़े हुए

0: व्यवसाय के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद मासूम जी।
2: श्रमिक बंधुओं, तो ये थे मोहम्मद समी, हमारे आज के मेहनतकश के मेहमान, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से एल्युमिनियम फैब्रिकेशन व्यवसाय के जरिए भी आप खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अपने साथ साथ कई युवक युवतियों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इनकी बातें आपको जरूर प्रेरित करेगी और आप भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कार्य करके खुद को स्वावलंबी बनाएंगे। इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद, और इसी के साथ ही देख रहे हैं श्रमिक बंधुओं के हमारे कार्यक्रम मेहनत कश का समय यही समाप्त होता है। खुशहाल रहिए, समृद्ध रहिए और अच्छे सोच के साथ, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे कदम भरते रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।
0: श्रोताओ, परिश्रम मानव जीवन की उन्नति

मेहनतकश साथियों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। शुदा, चलिए इस वक्त हम आपको लिए चले उस दिशा में जहाँ कुछ बातें हैं दिल की, जहाँ कुछ बातें हैं अरमानों की, जहाँ कुछ बातें हैं जज्बातों और एहसासों की। लीजिए पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आज के महफिल का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज में पराया धन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गाना बस इस संदेश के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

दोस्तों, ऐसे दिलकश गीतों का सफर चल रहा है आपके FM 102.1 MHz पर। और आज आपके साथ इस गायकी में आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव। लीजिए गायकी की अगली पेशकश आपके लिए।

0: அம்மா நீ என்ன சொல்ற?
1: बातें की रात की इस फिल्म में आप सुन रहे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को।

मध्य रफी की आवाज में श्रोता आप सुन रहे गाना फिल्म लोफर से, और इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत की महफिल यहीं सिमटती है। डीजे वंदना श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर संध्या के 6:54 और 41 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर होगा जिले में आजकल, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता और ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील। कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर-18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजनों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं।
6: हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं। नक्सलवाद की जड़े किसी झारखंड में भी बहुत रूप से मजबूत थी, पर हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हम नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करेंगे। आज जो उग्रवाद की घटनाएं होती थी, जिस प्रकार से नक्सलवाद था, आज उसको पूरी तरह से समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई।
5: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की 1 सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं।
7: केंद्रीय अध्यक्ष सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा कर
8: हम अपनी पार्टी से बैजनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे।
5: इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता अ ट्राइबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति, सामुदायिक जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ उसका गहरा संबंध राज्य की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय जीवन दर्शन जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण संदेश देता है। जामताड़ा जिले में एसआईआर के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जागरूकता शिविर में आज विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए और मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में एसआईआर अभियान को सफल बनाने की अपील की।
9: हम लोगों का आदमी सीधा है, तमाम विषयों के बारे में उतना सचेतन नहीं रहता, इसलिए हमारा

0: गठन तत्पर हो, अगर एसआईएम में नाम छूट जाएगा, मतदाता सूची से नाम हट जाएगा, इनको हम अपने मौलिक अधिकार को खो बैठे। इसलिए हमारा जो लड़ाई है, इस मौलिक अधिकार को बचाने का लड़ाई है, ताकि एक भी जग मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे।
1: सरायकेला खरसावां जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के तहत बूथ लेवल अधिकारी के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक शिक्षिका और एक स्वास्थ्य सहिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गम्हरिया ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र भेजा है। अंचल अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि नियुक्त कर्मियों की ओर से दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने से मतदाता पुनरीक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका है। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य पारदर्शी तरीके से करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रविन्द्रनगर भवन में आयोजित शिविर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने एसआईआर के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण किसान बागवानी को अपनी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहे हैं। एरेंडा गांव के आसपास ग्रामीण किसान इन दिनों आम, तरबूज सहित अन्य कई फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
2: मनरेगा की तरफ से लगाए, पास हुआ, फिर आम लगाने के बाद हम लोग वहाँ ड्रिप सिस्टम से हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती भी किए, टमाटर का खेती भी किए, मानी सारा खेती बाड़ी उसी में हम लोग तिवारी भी हो रहा है।
3: यहाँ पर ड्रिप सिस्टम से हम लोग खेती किए, तो वही से हम लोग शुरुआत किए और अभी इसी के कारण आम बागवानी भी अच्छा ही फल दे रहा है।
1: लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक में विभाग की दो प्रमुख योजनाओं, मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पहुंच पथ वाले टोलों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जुलाई माह तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाए और जहां पहुंच पथ उपलब्ध नहीं है वहां विशेष प्रकार के पोल एवं अन्य तकनीकी विकल्पों के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य किए जाएं। उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंता समन्वय स्थापित कर कार्य करें। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में डुमरी गिरिडीह पथ पर पिपराडीहा के ओवरब्रिज के समीप आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। मृतक पिता एवं पुत्र हैं, जबकि एक किशोरी समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पेड़ों के आसपास न रहें और सुरक्षित स्थानों में शरण लें। राज्य भर में जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भीषण गर्मी और जल संकट के कारण परेशान हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव चरकपानी के लोग डोभा का पानी पीने को विवश हैं। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरों के लिए भारतीय टी20 टीम की घोषणा की है। श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को क्रमशः कप्तान और उपकप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया है, उन्हें टीम में भी जगह नहीं मिली। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय सीनियर टीम में चुने गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्धजन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील, कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर-18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बूथ स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी उपस्थित रहे। श्री पांडे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि SIR की प्रक्रिया में सभी को सहयोग करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विगत महीनों में अन्य राज्यों में SIR के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल भी किया।
2: स्पष्टता की SIR को जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें हम लोग सहयोग भी करें और हमारा ये प्रयास हो कि कोई भी व्यक्ति जो वोटर है, जो पात्र है, उसका वोट कटे नहीं, का नाम कटे नहीं। और जो नए लोग हैं, नौजवान जो साथी है जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, उनका नाम उस वोटर लिस्ट में जुड़े। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, उस प्रक्रिया से आप लोग भी वाकिफ होंगे।
1: जिले के शिक्षा विभाग में विज्ञान किट की आपूर्ति में कथित घोटाले से संबंधित शिकायतों पर जांच टीम गठित की गई है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने कहा है कि जांच टीम द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: ये है कि साइंस किट का जो पैसा है वो 2024-25 का जो है उसमें आया हुआ था स्कूलों को। मामला जिसमें आया है, ये कहा गया है कि कोई एक निजी फर्म है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो अपना मिली भगत करके BRC से जो है वो संबंधित राशि की निकासी की गई है, और जो साइंस किट जो विद्यालय को दिया जाना था वो भी नहीं दिया गया। जबकि जो नियम है उसमें ऐसा है कि जब तक आपूर्ति सामानों की नहीं हो तब तक कोई भी राशि को विमुक्त नहीं किया जाना होता है।
1: जिले में नशापान के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जागरूकता लाने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उपायुक्त मनीष कुमार ने विशेषकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू या नशीले पदार्थों के सेवन से उन्हें दूर रहना चाहिए।
4: और तरह तरह की एक्टिविटीज़ हमारे पूरे जिले भर में चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग किस प्रकार से और अधिक जागरूकता फैला सके लोगों में। प्रत्येक दिन 3500 के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस बुरी आदत से। आपके माध्यम से भी युवाओं से विशेषकर अपील होगा कि तंबाकू पदार्थों को, उत्पादों को हम लोग कम से कम प्रयोग करें और इसे बिल्कुल ही छोड़ दें। आम जीवन में इनके उपयोग से हानि भी है और हम अपने जिले को ड्रग्स, तंबाकू इत्यादि के दुष्प्रभाव से जितना बचा सकते हैं उतना ही हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है सार्थक होगा।
1: इस सिलसिले में नशीले

0: दवाओं की खरीद बिक्री की रोकथाम को लेकर दवा विक्रेताओं के साथ भी आवश्यक बैठक की गई और उन्हें सुरक्षात्मक कई निर्देश दिए गए हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
1: FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, लीजिए पेश है गीतों का कार्यक्रम झनकार।

नमस्कार दोस्तों, झनकार की महफिल में मैं आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव FM 102.1 गार्ड्स पर। कहीं प्यार ना हो जाए, आइए सबसे पहले इस कार्यक्रम का आगाज करें इस फिल्म के गाने के साथ जिसे गाया कमाल खान ने। और इस गाने में कमाल खान का साथ दिया सुनीता राव ने।

कमल खान और सुनीता राव की आवाज में श्रोता आपने सुना ये पहला गाना झनकार का कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म से। लीजिए पेश है क्योंकि अगली पेशकश

झनकार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारी बाग केंद्र से। लीजिए सुनिए बिका सिंह और श्रेया घोषाल का गाया ये गाना फिल्म बेशर्म से।

FM 102.1 MHz के श्रोताओं, बता दें कि आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब के जन्मदिन पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम वो भूली दासता, हमारे सीनियर अनाउंसर राजीव कुमार के साथ।

FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। रात्रि के कुछ ही पल बचे हैं जब आप सुनेंगे हमारे इस केंद्र से कई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फिलहाल संध्या के 7:30 और 7 सेकंड हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम है।

ज्वेल थीफ का ये सदाबहार गाना है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने एफएम सेट पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

FM 102.1 MHz पर श्रोता आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। अभी आपने सुना ज्वेल थी फिल्म का ये गाना। अब लीजिए आप तक पहुंच रहा है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना लता मंगेशकर की आवाज में मिलन फिल्म से।

मोहम्मद रफी की आवाज में राम और श्याम फिल्म का ये गाना श्रोताओं आपने सुना और इसी गाने के साथ ऑल टाइम हिट्स यही समाप्त होता है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं लीजिए पेश है करियर सलाह पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नवचेतना। संकलन एवं वाचन है श्वेता रानी का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है विक्रम कुमार रंजन। पेश है कार्यक्रम नवचेतना।

कार्यक्रम नवचेतना के इस बहुप्रतीक्षित नए अंक में आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार जुहार। साथियों, विद्यार्थी जीवन सीखने, मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत होता है। मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जो विद्यार्थी समय का सही सदुपयोग करते हैं, वही सफलता भी हासिल करते हैं। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, यही सफलता का सबसे सच्चा रास्ता है। कहते हैं, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी। इसीलिए तकलीफों को सफलता और कामयाबी का रास्ता समझकर निरंतरता जारी रखें। एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी।

0: दोस्तों, गीत के बाद आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर का सपना संजोए विद्यार्थी प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जेईई की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इस पर जानकारियों के लिए हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं करियर काउंसलर अमरदीप सर को। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम। नमस्कार
0: सर। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जेईई की जो परीक्षा है उसमें जेईई एडवांस और जेईई मेंस होता है, तो दोनों में क्या अंतर है सर?
1: इससे पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चे जब 11वीं में जाते हैं और अपना विषय चुनते हैं, मैथ चुने या विज्ञान में जाकर के बायोलॉजी चुने, जब बायोलॉजी बच्चे चुनते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, या फिर अगर बच्चे मैथ्स में रुचि रखते हैं आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेके अपनी पढ़ाई 11वीं में करते हैं। अब जब जेईई की बात हम करते हैं तो वो अक्सर बच्चे होते हैं जो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं जो मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी लेते हैं। अब बात करें जेईई की, तो ये हो गई आपकी बात कि क्या विषय लेना आपको 10वीं के बाद 11वीं में। अब जब आप मैथ्स लेते हैं तो जेईई की जो तैयारी होती है वो इंजीनियरिंग में अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होती है, जहां अलग अलग सेक्टर्स में आपको कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, सिविल में, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने के लिए लेते हैं। अब 11वीं और 12वीं की जो सिलेबस होती है मूलतः यही सिलेबस आपकी जेईई एग्जाम की भी होती है। अब फिर यहां एक चीज समझना होगा कि जो जेईई का आपका एग्जाम होता है वो दो भाग में होता है, पहले आपका होता है मेंस, उसके बाद उसको क्वालिफाई अगर आप करते हैं उस कट ऑफ रैंक के अंदर आते हैं तब आप एडवांस की एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं।
0: तो इसमें कट ऑफ मार्क्स क्या होता है सर?
1: जनरली हर साल ये बदलते रहता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप 105, 110, 112 नंबर लाते हैं तो आप कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं।
0: तो एडवांस और मेंस इसमें अंतर क्या है ये बताएं सर।
1: मेंस जो होता है आपका पहला पड़ाव है, जैसे जब इंजीनियरिंग के बारे में बच्चे बात करते हैं तो बच्चों को शौक होता है आईआईटी जाने का या फिर एनआईटीज में जाने का, तो सरकार क्या करती है या जो एग्जाम लेती है ये दो पड़ाव पे एग्जाम लेती है। मेंस के थ्रू कुछ कॉलेजेस हैं जहां एंट्री होती है बच्चों की, जो कॉलेजेस हो जाती हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट जो है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जीएफटीआई भी जिसको बोलते हैं, वहां पे अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप मेंस के थ्रू ले सकते हैं। अब मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं, एडवांस में भी आप क्वालिफाई करते हैं जो अभी समाप्त हुआ है और इसके रिजल्ट भी आए हैं 2-3 दिन पहले, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको जाके आईआईटीज में एडमिशन मिलता है।
0: तो सर, आईआईटीज और एनआईटी दोनों में अंतर क्या है सर?
1: कोई खास अंतर नहीं है, बस यही है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन होगा ये एग्जाम ही तय करते हैं और उसके आधार पे ही आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि टॉप आईआईटीज में आपको आईआईटी बॉम्बे आता है तो वहाँ पे अगर आईआईटी दिल्ली हो गए, ये टॉप कॉलेजेस हो गए, मद्रास भी हो गया, अब यहाँ आपको एडमिशन चाहिए तो टॉप रैंकर्स बच्चे जो हैं, अब जैसे आईआईटी बॉम्बे में अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो लगभग आपको 100 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा एडवांस में, और कई कई बार ऐसा होता है कि उससे कम भी होता है। अगर आप कैटेगरी वाइज सब हटा के देखें तो एक जनरल आइडिया रख सकते हैं कि 50, 60, 70 में अगर आप हैं टॉप 50, 60, 70 में तब जाके आपको वहाँ पे एडमिशन हो पाती है।
0: 11वीं 12वीं से इसकी जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है?
1: बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने। बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई है और जो जेईई की पढ़ाई

0: एग्जाम में लिखना पड़ता है, उसमें कुछ चीजें हम याद करके भी जाते हैं, वो लिखते हैं। लेकिन इसी आधार पे इसी टॉपिक से जब जेई में क्वेश्चन आता है तो वो एप्लीकेशन बेस्ड रहता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, क्वेश्चन रहते हैं उसको आप अपना क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग करके उसको जवाब देते हो। तो मूलतः यही अंतर है, सिलेबस सेम होने के बावजूद जो अप्रोच है पढ़ाई करने का वो डिफरेंट रहता है।
1: सर हर बार इसके सिलेबस अलग हो जाते हैं?
0: नहीं, जैसे कि अभी एनसीईआरटी में कुछ काट छाट की गई है, लेकिन उससे खास फर्क आपको जेई की तैयारी में नहीं पड़ता, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे जब जेई की लेवल की तैयारी करते हैं तो जो सिलेबस में हो सकता है कि ना हो जब एडवांस के लिए आप जाएंगे, जो बच्चे मूलतः रिजल्ट करते हैं वो जो काटी छाटी गई है उसको भी एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ते हैं।
1: कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर देख लिया जाए या उनकी तैयारी कर ली जाए तो आने वाले जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है, तो इसमें इसका क्या रोल है सर?
0: जैसे कि क्या होता है, एग्जाम तो ये हर साल होता है, लेकिन जो बच्चा दे रहा है वो पहली बार दे रहा होता है, तो उसको नहीं पता होता है ये किस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब वो सॉल्व करता है तो उसको एक पहले से आइडिया रहता है कि मेंस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। एक बस अंदाजा लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें।
1: कई बच्चे पूरे के पूरे बुक्स रट जाते हैं और कई बच्चे जो होते हैं वो स्मार्टली पढ़ाई करते हैं, तो क्या अंतर होता है सर दोनों की तैयारियों में?
0: रटना गलत है अगर लॉन्ग टर्म में देखें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कई बार रटना काम भी आ सकता है। अब बस अंतर ये आता है कि किस तरह के एग्जाम के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं। जेई जैसे एग्जाम के लिए जब आप अप्रोच कर रहे होते हैं तो रटना बहुत काम नहीं आ सकता है। सिलेबस चलने का जो बात है कि आपको रटना चाहिए या समझना चाहिए, तो कुछ चीजें होती है जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, उसको याद कीजिए और किसी एक बुक को जो भी आपको पसंद आता है, अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग राइटर्स के जो किताब है, एक बुक को आप दो बार तीन बार सॉल्व करने की कोशिश करें बजाय कि आप अलग अलग किताबों पे अपना नजर फेरे।
1: तो कौन से राइटर्स की बुक जो है वो जेई के परीक्षाओं के लिए बेहतर है?
0: देखिए नाम बताना किसी भी लेखक का सही नहीं होगा, क्योंकि आजकल बच्चे खुद इतने जानकार हैं इंटरनेट के आने की वजह से। बस मेरा सुझाव यही रहेगा कोई भी लेखक का पढ़े, कोई भी किताब बुरी नहीं होती है, बीच में जाते जाते भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, तो शुरू करने के लिए कोई भी किताब आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा एनसीईआरटी से आप शुरू कीजिए, उसको ठीक ढंग से बनाइए, आप आगे खुद अपना रास्ता समझ जाएंगे।
1: सर इसमें काफी गहन पढ़ाई करनी होती है तभी जाकर के इसकी जो तैयारी है वो मुकम्मल मानी जाती है, तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी और टाइम मैनेजमेंट दोनों का क्या महत्व है?
0: ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि दोनों ही करना अति आवश्यक है। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे तो कितना भी मेहनत कर ले रिजल्ट हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, संभवतः आप विफल ही रहेंगे। इनफ टाइम दे करके सिलेबस को पढ़ना है। अब जहां तक रहा बात टाइम मैनेजमेंट का, तो मूलतः बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, जहां उनको स्कूल का भी होमवर्क करना होता है, तो स्कूल के होमवर्क को सीरियसनेस के साथ करना चाहिए और साथ साथ में अपनी जो तैयारी है उसको रखना चाहिए। बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि 12वीं के साथ ही सिर्फ एक मौका नहीं रहता एग्जाम देने का, तो खुद पे स्ट्रेस भी ना ले और ठीक ढंग से ईमानदारी से अगर मेहनत करे तो टाइम मैनेज हो सकता है। और दूसरी चीज आती है मेहनत करने के लिए, जेई जैसे एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए जहां आईआईटी की सीट लगभग आपको 18,000 कुछ ही है, वहां अगर आपको जगह बनानी है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना अलग होना पड़ेगा, कितना अधिक मेहनत करना पड़ेगा।
1: एग्जाम के बाद काउंसलिंग का क्या महत्व है सर?
0: काउंसलिंग का महत्व सिर्फ एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम के पहले भी है। बहुत बच्चे 10वीं के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि क्या विषय ले, पीयर प्रेशर में आकर के, फैमिली प्रेशर में आकर के, दोस्तों को कहीं यहां वहां जाते देख करके बहुत बच्चे अपना चुनाव करते हैं कि हमको ये चीज की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो ये समझना जरूरी है स्टार्ट करने से पहले कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी रुचि क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपको 10वीं में उतने हिसाब के नंबर ना मिले हो जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी काबिलियत हो, क्योंकि नंबर आना आप कितना पढ़े हैं ये भी दिखाता है। गणित में विषय में रुचि है आपकी बट नंबर कम आ गया इसलिए आप मैथ छोड़ देना चाहते हैं, ये तरीका सही नहीं हो सकता है। तो ये काउंसलिंग के बाद ही आप एक अंदाजा लगा सकते
1: हैं। सर अभी जो जेई के एग्जाम्स हुए हैं उसके बाद काउंसलिंग के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो उसमें किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि उन्हें अच्छे सेगमेंट मिल पाए, इसके बारे में कुछ बताएं सर?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, सवाल में भी आपने थोड़ा सा जवाब दिया कि अच्छा सेगमेंट मिल पाए। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा एडवांस में ठीक ठाक रैंक लाया है, तो काउंसलिंग में ये हेल्प होती है कि कौन से कॉलेज के लिए उसको ऑप्ट करना चाहिए। प्रायोरिटी जो लिस्ट हम भरते हैं जब काउंसलिंग में, प्रायोरिटी कॉलेज और स्ट्रीम आपका क्या होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि बच्चे काउंसलिंग में सही अप्रोच ना रखने की वजह से जो उनको स्ट्रीम या जो कॉलेज मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। तो ये आप किसी संस्था में जहां काउंसलर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, उनसे इस बारे में बात कर सकते हो, जिनको उचित जानकारी है वो इस क्षेत्र में मदद कर सकते हैं।
1: जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये आसान हो जाता है, चाहे वो मेडिकल का लाइन हो या फिर इंजीनियरिंग का लाइन हो, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए कितना टफ हो जाता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना।
0: किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मानसिक आधार पे इसका बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप जेई की तैयारी करते हैं तो जो सीबीएसई से अच्छे स्कूल से पढ़े हुए या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हैं उन बच्चों को देखते हैं, तो एक मानसिक दबाव

0: महसूस करते हैं। अब जहां तक पढ़ाई की बात करें तो क्योंकि आप एग्जाम जो दे सकते हैं वो हिंदी में भी दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो यहां उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
1: जेईई एग्जाम्स में जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो अभी काउंसलिंग के लिए गए हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप सर?
0: जिन बच्चों ने भी अच्छा किया है जेईई एडवांस में उनको सबसे पहले मुबारक, उनका आगे चल के करियर अच्छा रहे, जिस तरीके से मेहनत करके यहां तक पहुंचे उनके लिए एक संदेश रहेगा कि आगे भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है।
1: तो सर आपने बेहतरीन जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: जेईई की तैयारियों से जुड़ी इन तमाम जानकारियों के बाद अब आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर एक नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है कृषि में महिलाओं की भूमिका को पहचानना। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय की स्थापना की है। कजाखस्तान की एलेना रायबकीना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में आर्यना सवालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से ग्रासा माशेल को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीता अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भू विज्ञान का नोबेल कहा जाता है। 79वें बाप्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म बनी है बूम। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के इन तमाम जानकारियों के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, डालते हैं नजर जॉब के लिए आई कुछ वैकेंसीज पर। भरे जाएंगे लगभग 12,256 पद। एसएससी सीजीएल 2026 के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स आदि पदों को भरा जाएगा। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 18 या 20 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु सीमा है 27 से लेकर 30 और 32 वर्ष तक। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी ये अंतिम तिथि है। वहीं स्नातक स्तरीय एक और वैकेंसी की बात करें तो SBI में अप्रेंटिस के 7,150 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा इसमें रखी गई है 20 से 28 वर्ष के बीच। इच्छुक उम्मीदवार जो है 8 जून 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसकी ये अंतिम तिथि है। जो आवेदन आप करेंगे उसकी सत्यता की जाँच आप संबंधित वेबसाइट्स पर जरूर कर लें। और अब इसी के साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से रहेगा इंतजार, तो नोट कीजिए जल्दी से हमारा पता। पता है कार्यक्रम नवचेतना, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हजारीबाग, पिन संख्या है 825301। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम नवचेतना से अपनी दोस्त श्वेता को इजाजत। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे करियर सलाह पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नवचेतना। संकलन एवं वाचन था श्वेता रानी का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विक्रम कुमार रंजन।

102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोता, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

चाहत का पंख लगाकर ख्वाहिशों का जहां बसाने हाजिर हैं साथियों इस पल आपके FM 92.1 MHz पर। सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। पेश है कार्यक्रम आपकी चाहत।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के आवाज में साथियों आप सुन रहे ये गाना फिल्म नूरी से हमारे इन दोस्तों की पसंद पर। ये है सरोजा कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आशमा सालिया और उनके परिवार के सभी सदस्य।

दोस्तों इसी गाने की फरमाइश हमें की थी लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगरी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा। आपकी ये फरमाइश हमने कर दी पूरी। सुनते रहिए अपनी पसंद का ये गाना अपने FM 102.1 MHz पर।

मोहम्मद रफिया गीता दत्त की आवाजों में आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत फिल्म सीआईटी से हमारे ढेर सारे दोस्तों की पसंद पर, जिनके नाम हम बताएंगे बस छोटे से अंतराल के बाद।

पंच मंदिर रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आजू, नीलोफर परवीन आजू, हबीबा खातून आजू, कहकशा इरफान, शबाना फिरोज और शमा परवीन आजू ने लिखा था खत हमें इस गाने के लिए। जीडी रोड बड़ी से इसी गाने की फरमाइश की थी सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु कैलाश, पूनम और नूतन ने। दोस्तों आपके लिए भी ये गीत हमने सुना डाला आज के इस महफिल में।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे ये गाना फिल्म मोहब्बती से हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर। पत्रातु से बिसिल खालको, सेसिल खालको, मधुरिता रचना, मीतु श्वेता पल्लवी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने सुना जाया था इसी गाने को।

0: सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने भी सुनना चाहा था इसी गाने को एकता कॉलोनी रोहतक से। और दोस्तों आपकी भी फरमाइश हमने कर थी पूरी।
1: कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।
0: आपकी चाहत की ये महफिल बस यही ढलती है दोस्तों, क्योंकि आज की महफिल बहुत ही छोटी थी लेकिन बहुत ही प्यारी थी। अगली महफिल में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो खत लिखना ना भूले। नोट कीजिए हमारा पता, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र, निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड 825301। और इसी के साथ दीजिए वंदन श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार। आपकी चाहत, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विशेष वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण आकाशवाणी की रांची केंद्र से।

0: Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, Senior Journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. Iske antargat aaj suniye Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Tashak. Isme bhaag le rahi hai Professor Sushma Yadav aur Varisht Patrakar Aditi Tandon. Karyakram ka sanchalan kar rahi hai Sonu Sood.
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and Senior Journalist Aditi Tandon. So Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थीं और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता. मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
2: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज मोर देन 61% वुमेन. सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं. मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया. देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी.
2: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है. और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है. और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस्ड 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं, हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो जी जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी हैं इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है जी, ये आजीविका के
1: मामले
2: हैं।
1: यस जी, अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
3: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the 4 pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government. We have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense and sports. We just saw JEE Advanced results come in and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children, you know, they comprise 67.7% of India's population, the data that has come in just before the beginning of the new census. So empowering them is not just a requirement anymore. It is a strategic imperative. Because look at the percentage of women and children in the country, literally 70% right now. So that is the basis of the landscape that has been created. What you just mentioned, that you have women leaders across segments these days. And you rightly said that, you know, you have women in startup leadership roles. You have women across mudra loans. You have around 70% mudra loans that have gone to only women. So the gaps that existed in the policy framework to enable women to achieve their financial potential have now been filled through several schemes. And what we also need to remember, Sonu, is that for generations, Indian women have faced systemic barriers. You know, there have been limited access to education and healthcare, to employment, as well as decision making, especially if you look at the rural heartland of the country. But now what you see is, you see a massive movement of around 90 lakh self-help groups. This is basically a rural economic phenomenon. And 10 crore women are already associated with these self-help groups. This is the backbone of the Lakhpati Didi program that the government is mentioning and is powering like never before. And they have also enhanced the targets under this scheme. I think the plan is now to have 6 crore, if I'm correct, women attain the Lakhpati Didi status. The idea is basically to help women make 1 lakh rupees annually as income through various programs that go on under the self-help group movement of the government of India. So there is focused intention to help women reach where they belong. And the larger point that we have to make is that women are now no longer seen as passive beneficiaries of government schemes. They are seen as empowered agents of change, you know, central to the growth story of the country. And if you look at the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, you will realize that the government has put in its policy intent also to ensure political empowerment of women, which is the ultimate empowerment.
1: You were saying, you know, that women are not just passive beneficiaries, bank sakhis, krishi sakhis, pashu sakhis. These concepts, you know, really embody what you're saying, that empowerment of women by women.
3: Yeah, yeah, absolutely. You see, for a very long time, what had happened is, like, I think Sushma ji was mentioning very rightly, she was saying that it's never been that there has been lack of potential on the side of Indian women. Mm-hmm. You know, women in our country have a profound legacy of strength. Throughout centuries, if you look, they've led empires, they've driven social reforms. You know, they've even fought on the front against the colonial British rule. I mean, we have Rani Lakshmibai as an example, Rani Chennamma, Ahilya Bai Holkar. Among freedom fighters, we have Lakshmi Sehgal, Sarojini Naidu. So there are n number of examples of women enterprise in our country through different sectors and through different segments. What had happened is, suddenly after independence, there was lack of policy intent to see women as drivers of change. So, you know, you were not looking at women as a segment that can drive the economy of the country. Now that entire policy focus has shifted. And like you said, that women have been brought into the front financial mainstream of the country. And the first big step that helped lay down the landscape for that was the Jan Dhan accounts. Now, this sounds very simple. It sounds very mundane, but it's a very, very big, very consequential reform. Under the Jan Dhan accounts, the bank accounts that were opened, zero balance accounts, majority of the accounts are owned by women. I think, if not majority, at least 40% of these accounts are with women. And around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers, and then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system, and you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yes,
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari aur jo daughters hai unke education unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the aur financial year 2024-25 mein ye sankhya badhkar 4 crore 53

0: जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में। सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है?
1: बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है। और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900 विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929 एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वॉज बिकॉज ऑफ दैट। और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा। आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप। और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप JEE देख लीजिए, आप CBSE देख लीजिए, आप NEET देख लीजिए, आप BA MA PhD यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग men in almost all achievements. They get to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी।
0: बिल्कुल,
1: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं LPG कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ, फिर मातृवंदना योजना जो PM मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट, और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
0: फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड एज यू आर रेफरिंग, यू नो, टिल मार्च 2026 मोर देन 11.87 करोड़ चिल्ड्रन एंड 3.96 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन वर रजिस्टर्ड एंड 8.73 करोड़ वुमेन वर स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर। एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है, जी, सो मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। जी 98, बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है,
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं।
0: जी जी,
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%, सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से, सो ODF फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, due to the Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager at their children or especially girl children.

0: come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. And Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत एज वी से. आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
1: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इश्यू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है. जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशन बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा. इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो. पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है.
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है. और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है. लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं, ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो. सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी.
2: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है. दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन

0: सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के यू नो कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी यू नो सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज। वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेज को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी?
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट। बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए। क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटर स्किल्स बिकॉज skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time. And you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है women led development कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%. और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र समाज.

0: दोनों उसके लिए तैयार हूं।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन अप यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो वो गवर्नेंस का रूप बदलेगा, और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: आदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है, और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए, वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ, आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
0: Thank you.
3: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक, इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम,
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
5: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
6: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
7: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
6: Realize the full potential of our time.
4: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी।

0: राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
4: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह

0: राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze.

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधन आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में कभी उस पग

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

ये आप श्रेणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, पेश है मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहेब के जन्मदिन पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम वो भूली दास्तां। प्रस्तुत करता है राजीव कुमार, एडिटिंग और मिक्सिंग किया है अभिषेक कुमार ने। पेश है कार्यक्रम वो भूली दास्तां।

0: जी हाँ, मशहूर गीतकार, डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर राजेंद्र किशन साहब की हम बातें कर रहे हैं दोस्तों। आज 6 जून को उनका जन्मदिन और इस खास मौके पर आप सबों के बीच आ रहे हैं राजेंद्र किशन साहब के बेटे राजेश दुग्गल जी। तो राजेश दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आपको आकाशवाणी हजारीबाग के तमाम सदस्यों और श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत नमस्कार।
1: आकाशवाणी हजारीबाग चैनल के श्रोताओं को और राजीव जी आपका प्रोग्राम सुनने वालों को राजेंद्र कृष्ण जी के बेटे राजेश दुग्गल का नमस्कार, प्रणाम।

0: तो बातों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं राजेश दुग्गल जी। सबसे पहले अपने पिता राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में कुछ बातें शेयर कीजिए।
1: राजेंद्र कृष्ण जी प्री पार्टीशन इंडिया गुजरात डिस्ट्रिक्ट जलालपुर जट्टा में पैदा हुए थे। वहां से शिमला चले गए, जहां कुछ साल रहकर वो बंबई आ गए करीबन 1942-1943 में। 1947 में उनके दो फिल्में रिलीज हुए, जनता और जंजीर।
0: अच्छा।
1: गीतकार कमर जलालाबादी जी के साथ कई फिल्मों में दोनों ने साथ गाने लिखे, जैसे आज की रात, प्यार की जीत, बड़ी बहन वगैरह, और इन सभी फिल्मों के गाने बहुत कामयाब हुए। मगर राजेंद्र कृष्ण जी की सबसे बड़ी हिट एक नॉन फिल्मी गाने से हुई, जो कि रफी साहब की आवाज में और हुसनलाल भगत राम जी के कंपोजिशन थी, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी।
2: सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना

0: सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस गीत ने तो दुगल साहब उस वक्त देशवासियों की आंखें नम कर दी थी और ये गीत काफी मशहूर हो गया था।
1: बिल्कुल, इस गाने के मशहूर होने के साथ साथ पिताजी और रफी साहब की दोस्ती भी बहुत अच्छी पक्की हुई। टोटल रफी साहब के साथ राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे हुए 343 गाने 343 सॉन्ग्स रफी साहब ने गाए हैं, जिसमें आ गए सोलो और ड्यूएट्स दोनों आ गए।

0: प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण साहब का जन्मदिन। लोगों के दिलों में बसने वाले राजेंद्र कृष्ण साहब और आप राजेश दुग्गल जी, उनके बेटे, उनके पुत्र, आपको कैसा महसूस होता है इतने बड़े गीतकार और संवाद लेखक राजेंद्र कृष्ण साहब के पुत्र होकर?
1: राजीव जी, दिल मेरा गर्व से और खुशी से भर जाता है कि मैं उनके लिखे हुए गानों के मार्गदर्शन से जिए जा रहा हूं। जैसे कि राजा हो या रंक, सभी का अंत एक सा होए, या अपनी अपनी किस्मत लेकर दुनिया में सब आए, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की।
0: यानी दुग्गल साहब, आप चौकीदार फिल्म के उस गीत की बात कर रहे हैं जिसे गाया था मोहम्मद रफी साहब ने।
1: बिल्कुल, इसके बारे में मेरा कहना और मानना है

मेरे बाल खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर, मेरा दिल भर आता है उनकी लिखी हुई ऐसी बातें सुनकर और

0: दुग्गल साहब, आप थोड़ा राजेंद्र कृष्ण साहब के परिवार के बारे में संक्षिप्त रूप में अपने भाई बहनों के बारे में बताएं, हमें बड़ी खुशी होगी।
1: हाँ हाँ राजीव जी, राजेंद्र कृष्ण जी टोटल 4 भाई और 1 बहन थे। शायद पिताजी ने सोचा उन्हें लाइफ में और बड़ा होना है, तो उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। मैं 5 नंबर पर तीसरा बेटा हूँ। मेरे 2 बड़ी बहनें और 4 भाई हम लोग हैं।
0: अच्छा।
1: सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का काम करके रिटायर हुए। 2 साल मुझसे बड़ा राजीव टीवी सीरियल, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स और एडवर्टाइजमेंट के जिंगल्स के म्यूजिक देते रहे।
0: क्या बात है।
1: उनकी वाइफ, मेरी भाभी और बच्चे सब सिंगर्स हैं, और हाल ही में AR रहमान के Nexa 4 प्रोजेक्ट में भाई के बच्चे शामिल हुए हैं।
0: अच्छा।
1: छोटा भाई ड्रमर था इंडिया की नंबर 1 रॉक बैंड इंडस क्रीड का।
0: क्या बात है।
1: और वो भी एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स का कंपोजर रह चुका है।
0: वाह।
1: मेरा काम आर्ट पेंटिंग्स का रहा, और अब पिताजी के गाने और डायलॉग लोगों के साथ बांटने में लगा हूँ प्रोग्राम्स के माध्यम से।
0: ये दुग्गल साहब, डायलॉग की जहाँ तक बात है तो कई फिल्मों के दमदार डायलॉग राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखे। एक बड़ी ही सुपरहिट फिल्म आई थी खानदान। इस फिल्म में संयुक्त परिवार के बिखरने के दर्द को बयां किया गया था, और इस फिल्म के डायलॉग राइटर आपके पिताजी थे।
1: हाँ जी राजीव जी, संयुक्त परिवार के टूटने के दर्द को बयां करने वाली फिल्म थी खानदान, और इस दर्द की झलक मिलती है पिताजी के लिखे हुए डायलॉग में, जो बहुत ही चर्चा में रहे।
2: अब मुखिया जी जल्दी कीजिए ना, आप इन लोगों को बंटवारे का कागज पढ़कर सुना दीजिए।
3: पंचायत के पंचों के सामने स्वर्गवासी राम स्वरूप के बेटे जीवनदास और शंकर के घरबार, जमीन और जायदाद के 2 हिस्से बराबर बराबर किए जाते हैं। इन दोनों भाइयों के पास काश्तकारी की 100 एकड़ जमीन है। इस जमीन के 2 बराबर हिस्से 50-50 एकड़ दोनों भाइयों में बांटे जाते हैं। इसी तरह गाय, भैंसों, घोड़ों, बैलों, बकरियों और घर के बर्तनों का आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों के नाम किया जाता है। इनका जद्दी मकान जो इस गाँव में है, इसके दरमियान दीवार खड़ी करके इसके 2 बराबर के हिस्से किए जाते हैं। आज के बाद ये एक दूसरे के हिस्से में दखलअंदाजी नहीं करेंगे। मंजूर है
2: मुखिया जी? खामोशी का मतलब है मंजूरी।

0: sen geldi. Tutum se. किसी ना किसी तरह मैंने इस घर की इज्जत को बनाए छुपाए रखा। होता था सिर्फ घर की दीवारों को ही मालूम था। घर की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई थी, लेकिन आज आज सारे गांव सारी बिरादरी को यह पता चल गया है कि हमारे घर में बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं। शंकर, जायदाद बट गई, ठीक है, घर के दो टुकड़े हो गए, ठीक है, लेकिन शंकर इस दुनिया में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो हमारे दिलों के टुकड़े कर सके, हमारे प्यार को तकसीम करते। शंकर, तुम घर के इस हिस्से में रहो या मैं घर के उस हिस्से में, हम बेटे तो दोनों राम स्वरूप के ही रहेंगे। भाई से दिल का प्यार कोई नहीं तकसीम कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। शंकर, सच कहता हूं, क्या करूं शंकर, ये जो कुछ हो रहा है हालात की मजबूरी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मुझे गलत मत समझना भैया, मुझे माफ कर।
1: ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे शरीर के दो टुकड़े कर दे, एक टुकड़ा मेरे हिस्से वाले घर में रहे और दूसरा आपके। नहीं, मैं अकेला कैसे रहूंगा, मैं अकेला नहीं रह सकता।
0: तू अकेला कहाँ है शंकर, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं।
2: अजीब बरसाती लोग हैं, रो रो कर सारे घर में कीचड़ कर दिया है। अरे जन्म जन्म से हल चलाने वालों, मुस्कुराओ के अब एक दूसरे की रोटियां नहीं गिनोगे।
3: जीवनदास, आपके घरेलू झगड़ों से पंचायत का कोई संबंध नहीं। आप लोगों ने कहा और हमने इंसाफ से तुम्हारे हिस्से तकसीम कर दिए।
2: ठहरिए मुखिया जी, आपने इंसाफ तो किया है लेकिन पूरा पूरा नहीं। मेरी बहन के साथ बेइंसाफी हुई है।
3: वो कैसे?
2: शाम की शादी मेरी बहन नीलमा के साथ होने वाली। शंकर के हिस्से में से आधा हिस्सा शाम का है और आधा गोविंद का, तो क्यों ना इन दोनों भाइयों का हिस्सा अभी कर दिया जाए, वरना कुछ दिनों के बाद पंचायत को फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी।
4: तू कौन होता हम दो भाइयों का हिस्सा बांटने वाला, अभी हमारा बाप हमारे सर पर है।
2: लेकिन हमेशा तो तुम्हारे सर पर नहीं बैठा रहेगा। देखो, आज तुम्हारा बाप अपने भाई से अलग हो रहा है, कल तुमको अपने भाई से अलग होना पड़ेगा। ये तो जमाने का दस्तूर है। और अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो जाओ पूछ लो अपने भाई से, जाओ।
5: कहेंगे मुझे मंजूर है।
6: श्याम, ये तू बोल रहा है? इस दिन के लिए मैं तेरी खाते ताते जागी, अपना खून पिला पिला कर तुझे पाला। जब गोविंद के एक हाथ और पांव की ताकत मारी गई तो मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई। इसके बाद जब तेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखों के आंसू थम गए। मैंने सोचा भगवान ने गोविंद की मदद के लिए तुझे जन्म दिया है। मैं समझती थी तू अपने भाई को कदम कदम पर सहारा देगा, लेकिन आज तू इसकी बातों में आकर अपनों को भूल गया। बोल, तू गोविंद से हिस्सा बांटेगा, इसे बेसहारा छोड़ देगा? बोल, बांटेगा हिस्सा, बांटेगा?
5: हाँ, बांटूंगा, बांटूंगा, बांटूंगा, बांटूंगा।
6: बांट ले हिस्सा, बांट ले हिस्सा, बांट ले। अपनी माँ के प्राण निकाल कर भरे बाजार में नीलाम कर दे।
5: माँ, माँ कर गोविंद की माँ, जब अपना खून ही पराया हो गया तो दुनिया को क्या तमाशा दिखाता। कर दो इनके भी हिस्से। तू भी सुन ले, आज से न तू हमारा और न हम तेरे। और बंचो, ये भी लिख दो इस कागज में कि मेरे मरने के बाद ये मेरे मुर्दा शरीर को भी हाथ नहीं लगा सकता। मुझे आग देने का भी अधिकार नहीं इसे। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा।
6: बाबा, बाबा,
0: शंकर, शंकर।

0: राजेश जी, राजिंदर कृष्ण साहब के लिखे गीतों की संख्या काफी बड़ी है। लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देशभक्ति गीत, प्रेरक गीत या फिर कॉमेडी सॉन्ग, उन्होंने जैसे भी गीतों की रचना की, करीब करीब सारे गीत लोकप्रिय हुए और लोगों की जुबान पर छाए रहे। इन्हीं गीतों की भीड़ में कोई ऐसा गीत जिसे सुनना और गुनगुनाना आपको बहुत अच्छा लगता हो?
1: राजीव जी, मेरी माँ बहुत धार्मिक विचार की थी। मैं उनके साथ मंदिर और कथाओं पर जाते रहता था। भक्ति गीत और रफी साहब दोनों मेरे दिल में बसे हुए थे। फिल्म खानदान का बड़ी देर भई नंदलाला सुनिए।

0: दुग्गल साहब, सुना है कि आपके पिताजी राजेंद्र कृष्ण साहब को घोड़ों की रेस देखना और हॉर्स राइडिंग काफी अच्छा लगता था। थोड़ा बताएंगे इस संबंध में, अपने पिताजी के अन्य शौक और स्वभाव के बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: उनके जैकपॉट के बारे में ये बता दूं कि वो एक दिन NSCI क्लब में ST नारंग साहब के कमरे में गाना लिख रहे थे और वहां से रेस को सामने दिख रहा था और पिताजी ये बात कह गए कि यहाँ मेरे पैसे बहुत जमा हुए हैं, एक दिन मैं आकर ले जाऊंगा। उन्हीं दिनों के बाद की बात है जब गुलशन राय जी की जॉनी मेरा नाम के लिए उन्होंने गाना लिखा, ओ मेरे राजा खफा ना होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया।

0: शायद ये गाना एक तरीके से आगे चलकर उनके नसीब से उन्हें वो जैकपॉट दे गया। जैकपॉट का अमाउंट था 48,74,600 and something।
1: अच्छा,
0: ये टैक्स फ्री होते हुए उन जमाने में पिताजी ने लाख रुपए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर्स फंड में खुद रूबरू मिलकर उन्हें दिए। और बस इंदिरा गांधी जी को जब ध्यान में आया कि ये सब टैक्स फ्री पैसे हैं जो वो दे रहे हैं, उन्होंने फॉरेन टैक्स लगवा दिया 33% रेस कोर्स इनकम पर।
1: अच्छा,
0: एंड ऑटोमेटिकली सब रेस गोअर्स जो थे वो पिताजी के एक तरीके से खिलाफ ही हो गए, भाई सबके ऊपर वो टैक्स जो पड़ गया। फिर भी पिताजी पैसों की अहमियत कभी नहीं रखी उन्होंने, ना कोई गर्व या घमंड पैसों की। पैसों को लेकर उन्होंने कई सारे गानों में जोड़ तोड़ डाल रखी थी।
1: अच्छा,
0: जैसे लेने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है बोलो जो पैसे का यार नहीं।
1: तो आइए दुगल साहब श्रोताओं के साथ इस गीत का आनंद लेते हैं।
2: लेने से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, ये ऐसी चीज है।

0: नहीं।
1: लेने से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं। यदुगल साहब, इसी तरह वैजयंती माला की एक पहली फिल्म का भी गीत उन्होंने लिखा था, थोड़ा बताएंगे?
2: बिल्कुल, 1951 की फिल्म बहार, जो कि वैजयंती माला की पहली हिंदी फिल्म थी, उसमें उन्होंने एक ऐसा गाना लिखा था, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। आप सोचिए, पार्टीशन को तो 4 साल हो गए थे, बहुत लोग ना उम्मीद उस समय जो हुए थे। एक टैक्सी ड्राइवर डीएन मधोक साहब, जो गीतकार उस समय सबसे मशहूर थे, उनके साथ बैठे हुए थे जब ये गाने के बारे में जिक्र हुई, तो टैक्सी वाला डीएन मधोक साहब से कहते हैं कि मधोक साहब, ये गाना तो आपने ही लिखा होगा। और मधोक साहब का जवाब ये था कि नहीं भाई, कोई नया लड़का पंजाब से आया है और लगता है हमें वापस पंजाब ही भेज देगा। ये तो रही मजाक की बात, मगर पिताजी के पैसे की एक तरीके से नजरिया जो था वो उनके गानों में कूट कूट के दिख जाता है कि उन्होंने पैसे को अहमियत कभी नहीं दी।

0: ये राजेश जी, राजेंद्र कृष्ण साहब ने कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, सी रामचंद्र, शंकर जय किशन, रवि, रोशन, हेमंत कुमार, कल्याण जी, आनंद जी, मदन मोहन, सचिन देव बर्मन, आर डी बर्मन, चित्रगुप्त और सलीलता, या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हर संगीतकारों के साथ देखे उनकी जोड़ी फिट बैठती थी, फिर भी किस संगीतकार के साथ काम करना उन्हें ज्यादा अच्छा लगा और किस संगीतकार के साथ उनके गीत ज्यादा पॉपुलर हुए, थोड़ा इस संबंध में आप अपनी ओर से कुछ कहें।
1: राजीव जी, इसके बारे में मेरा कहना और मानना है कि मदन मोहन जी के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी।
0: अच्छा।
1: मदन मोहन जी और राजेंद्र कृष्ण जी के नेचर में कई सारी सिमिलैरिटीज थे, पंजाबी होते हुए खाने पीने और रेस कोर्स जाना और ताश खेलना, सभी चीजें इकट्ठा दोनों की समान थी। इसलिए हम लोग थोड़े ही फासले पर रहते थे मदन मोहन जी के घर से। पिताजी उनके यहाँ अगर सिटिंग के लिए जा रहे होते तो अपने आप को काफी खाली पेट जाते थे, क्योंकि मदन मोहन जी बहुत ही बढ़िया कुकिंग करते थे और इसलिए उस उम्मीद से पिताजी वहां पर जाते थे कि वहां तो खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है। साथ में सिटिंग से पहले उनके पहले थोड़ी थोड़ी ताश हो जाती थी, थोड़ी हंसी मजाक हो जाती थी, जो कि पंजाबियों में ज्यादातर आप देखेंगे उस नेचर के हैं, तब जाकर उनकी सिटिंग शुरू होती थी। मदन मोहन जी का ये कहना था कि ज्यादातर वो सभी राइटर्स के लिए अपनी धुन पहले रिकॉर्ड करके उन्हें बतलाते थे। मदन मोहन जी का कहना था कि वो ज्यादातर अपनी धुन पहले तैयार करके फिर राइटर से गाने लिखवाते थे, लेकिन राजेंद्र कृष्ण जी के लिरिक्स आने पर वो अपनी धुन बनाते थे। ये थी उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग।
0: क्या बात है।
1: उनका मानना था कि उनकी लिरिक्स उनको इंस्पायर करती थी अलग किस्म के संगीत के लिए। मदन मोहन जी की पहली हिट फिल्म भाई भाई के लिए पिताजी उनको साउथ ले गए थे, AVM प्रोडक्शंस की फिल्म। और उसके अलावा उन दिनों में ऐसी पिक्चरें आई जैसे पॉकेट मार, देख कबीरा रोया, गेटवे ऑफ इंडिया, अदालत और जेलर जैसी फिल्में बहुत मशहूर हुए ये गाने। ये इन दोनों की दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग का ही कमाल था।
0: सचमुच
1: मदन मोहन जी की पहली हिट भाई भाई में ऐसे गाने थे, गीता दत्त जी का ए दिल मुझे बता दे, किशोर कुमार और लता जी के मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मजाकी गाना, और लता जी के कदर जाने ना मोरा बालम, जिसके लिए बेगम अख्तर साहिबा ने उस जमाने में ट्रंक कॉल करके मदन मोहन जी से लंबी चौड़ी बात करी थी। ये जिक्र तो सभी जानते ही है, इसकी जिक्र बार बार हर जगह होती ही है।

0: राजेश जी, राजेंद्र किशन साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी गीत लिखते थे, उन गीतों के बोल, उन गीतों की पंक्तियां लोगों की जुबान पर चढ़कर मुहावरों में बदल जाते थे।
1: हाँ हाँ।
0: हमारे दिल के एहसासों को बयां करने का एक नया तरीका भी दे जाते थे। पल पल दिल के पास, जैसे प्यार भरे गीत की हम बात करें, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, जैसे गीत की बात करें, तो ऐसे गीतों ने अगर दिलों से दिलों को जोड़ा है तो किसी चाहने वाले की खामोशी भी तोड़ी है। और कभी कभी कुछ गीत समाज में जुमले की तरह प्रयोग किए गए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
1: राजीव जी, उन्हीं के मुहावरे, उन्हीं के डायलॉग्स फिल्मों के मेरे दिल में जो बसे हैं वो उभर के आते हैं। पड़ोसन का वो डायलॉग, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, मेरी जिंदगी में तो ये डायलॉग एक तरीके से जुमला बन के ही रह गया है।
0: अच्छा।
1: मगर एक बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ या तो मेरे पास जवाब नहीं है और या जहाँ पर मैं निराश हो सकता हूँ, उस समय यही ध्यान आता है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, पड़ोसन फिल्म का डायलॉग।
2: जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है।
3: अब क्या हुआ?
2: हुआ ये कि बिंदु के इम्तिहान का रिजल्ट अखबार में छपा हुआ है, फेल हो गई।
3: चलो अच्छा हुआ, मैं तो लड्डू बांटूंगी लड्डू।
4: ओफो, लेकिन तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? बल्कि मुझे तो फेल होने की खुशी है, अगर पास हो जाती तो और पढ़ना पड़ता, अब तो मैदान साफ।
3: अच्छा। मैं लड़की को आगे पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, सीधी सी बात है। आप जल्दी से कोई लड़का ढूंढिए और उसके हाथ पीले करिए, समझे?
2: अगर तुम्हें सास बनने का शौक है तो मुझे भी ससुर बनने का शौक है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का भी तो मिलना चाहिए।
5: जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण।
2: श्रीमान, आपने मुझे पहचाना? आपके कपड़ों से तो ऐसा मालूम होता है कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन पंडित जी आप छतरी तो बंद कर दीजिए।
5: ये आपकी धर्म पत्नी है?
2: हाँ।
5: मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
2: बैठो।
5: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं श्रीमान, मैं इनके आनंदपुर वाले भाई का पुरोहित हूँ। उन्हीं की जबानी मुझे मालूम हुआ है कि आपको अपने लिए एक वर की जरूरत है।
2: जी,
5: मेरा मतलब है आपको अपनी कन्या के लिए एक वर की आवश्यकता है। मैं इसीलिए आपके दर्शन करने चला आया हूँ।
3: बड़ा अच्छा किया पंडित जी जो आप आ गए। अच्छे लड़के का खानदान कैसा है?
5: खानदान? अजी, खानदान से तो ठाकुर हैं और नाम कुंवर प्रताप सिंह जी है।
2: अच्छा, उम्र क्या है?
5: उम्र? अजी, उम्र तो अभी दंड बैठक निकालने की है।
3: और उसकी आमदनी क्या है पंडित जी?
5: आमदनी? अजी, आमदनी तो इतनी है कि अगर सारी जिंदगी दोनों हाथों से दौलत उठाएं तब भी 15-20 लाख रुपया बच जाता है। जय राधे कृष्ण। ये देखिए, मैं उनकी मनोहर छवि भी लाया हूँ। जय राधे कृष्ण।
2: पंडित जी, ये तस्वीर कुछ पुरानी मालूम होती है।
5: जी, बात यह है, ये तस्वीर बहुत दिनों से दरिद्र ब्राह्मण के मैले थैले में पड़ी थी।
3: जरा मैं भी तो देखूं। पंडित जी, आपको तो तसल्ली है ना?
5: आप चिंता मत कीजिए, ये घर मेरा ठोक बजाकर देखा हुआ है।
3: ठीक है, तो फिर ये तस्वीर आप यहाँ छोड़ जाइए, हम अपनी लड़की की मर्जी भी तो मालूम कर लें।
2: ठीक है,
5: जो आपकी इच्छा, मैं 2-4 दिन में पता लगाता हुआ जाऊंगा। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण।
0: 1957 में एक फिल्म आई थी आशा, और उस फिल्म का एक गीत इना मीना डी का आज भी लोगों की जुबान पर है। इस गीत की लोकप्रियता का आलम यह है कि इस गीत के नए वर्जन भी आए और अभी हाल ही में इना मीना डी का फिल्म भी बनी। राजेंद्र कृष्ण साहब ऐसे कालजयी गीतों की रचना कैसे कर लेते थे? सुना है इस गीत के पीछे एक रोचक प्रसंग भी है, थोड़ा शेयर कीजिए।
1: राजीव जी, सी रामचंद्र जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही। शुरुआत की फिल्मों में अनारकली के 12 में से 7 गाने पिताजी के थे।
0: अच्छा।
1: उसमें जहां काफी सीरियस गाने थे, ये जिंदगी उसी की है, जाग दर्द इश्क जाग, और फिर वो लता जी के कमाल की शराबी वाले गाने की गायकी, मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक फॉरेन बीट्स, साउथ अमेरिकन बीट्स के साथ में बहुत मशहूर हो रहा था। और पिताजी के साथ उनकी खाने पीने की और बाकी सारे शौक मतलब कॉमन थे, अच्छी जमी उनकी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, जिससे आगे चलकर एक गजब का गाना भी बन गया फिल्म आशा में, ईना मीना डी का।
0: अच्छा,
1: ईना मीना डी का जैसे बोल पिताजी को सुनने में मेरी बड़ी दीदी पप्पू दीदी आदर्श प्राशर, वो अपनी सहेली नजमा के साथ कोई साउथ अमेरिकन टाइप की गेम खेल रही थी, जो कि इंग्लिश की एक पॉपुलर गेम इनी मीनी माइना मो जैसे लग रही थी। वो बोल पिताजी ने पकड़ लिए।
0: वाह क्या बात है।
1: एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो बोल को लेकर बन गया गाना और वो रॉक एंड रोल म्यूजिक जो श्री रामचंद्र जी ने डाला था धूम मचा गई।
6: ईना मीना डी

0: खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहेब के जन्मदिन पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम वो भूली दास्तां का पुनः प्रसारण।

बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। चलते चलते आइए श्रोताओं, सुनते चलते एक बहुत ही प्यारा सा गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस पल रात्रि के 10:58 हुए हैं। थोड़ी देर में 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर होगा अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा

0: बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in